0: तक के सुबह की सफेद धारी रात की सियाह धारी से अलग नजर आने लगे। फिर रोजा रखकर रात तक पूरा करो और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठते हो तो उनसे मुबाशरत न करो, ये अल्लाह की हदें हैं, इनके पास न जाना। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के समझाने के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो परहेजगार बने। और आपस में एक दूसरे का माल नाहक न खाओ और न उसको रिश्वतन हाकिमों के पास पहुंचाओ ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज तौर पर खा जाओ, और इसे तुम जानते भी हो।
1: यसअलूनका अनिल अहिल्ला

الفتنة أشد من

0: सिंध असेंबली जे मेंबर जो सिंध में बिजली जे बदतरीन लोड शेडिंग खिलाफ़ एहतजाज। स्पीकर अवैस कादिर शाह समूरनि बिजली कंपनीज जे चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसरस खे 23 सेप्टेम्बर ते कमेटी इजलास में घुराइण जी हिदायत करे छॾी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिलना महमूद चयो आहे त लोड शेडिंग पाणी बिजली वारी वज़ारत जी नाली ऐं पाकिस्तान में गवर्नेंस जी नाकामी जो आला तरीन मिसाल आहे। हेस्को सेपको ऐं कैलेट्रिक जहिड़ा इदारा आवाम खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियण में नाकाम थी चुका आहिनि। सिंध में 18 कलाक बिजली बंदि कई वञे थी। इहो मसइलो क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में भरपूर अंदाज़ में उथारियो वञे। रुगो बिजली न पर आवाम खे गैस ऐं पाणी जा मसला बि दरपेश आहिनि। स्पीकर बिजली कंपनीज जे सरबराहनि खे घुराइण जी हिदायत कंदे घरु वज़ीर खे चयो त हुन ते अमलदार न आया त अव्हां खे तकलीफ़ ॾींदासीं।
1: डाउल हक में आठवीं तरमीम में आइन को बदला और उसमें होता था कि नेशनल असेंबली सूबों की अगर उन्होंने बाउंड्रीज चेंज करनी है उसका कोई आइनी तरमीम से ही हो सकती है। उसके अलावा अगर ऐसी कोई आइनी तरमीम करनी है तो वो पास नहीं कर सकती जब तक सूबा उसके हक में उस डिवीजन के या जो भी हक में दो तिहाई अक्सरियत के साथ एक करारदाद पास न करे। ये पहले था, अब उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि जी पास भले कर दे लेकिन सदर उस पर दस्तखत नहीं कर सकते जब तक 2/3 मेजॉरिटी से कोई सूबा उस पर रेजोल्यूशन ना पास करे। मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी। ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असम्बली नेशनल असम्बली की पास किए हुए कानून को सूबाई असम्बली रिजेक्ट कर दे? ये तो ज़ियाउल हक ने इस आइन के अंदर ये अजीब व गरीब शिक डाल दी कि नेशनल असम्बली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये गलत है, मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए।
0: सूबनि जे सरहदुनि बाबति क़ौमी असेंबली आइनी तरमीम नथी करे सघे। तरमीम लाइ सूबाई असेंबली मां 2/3 जी अक्सर ज़रूरी आहे। ज़ियाउल हक अचनि तरमीम ज़रिए आइन खे तब्दील कयो जंहिंखे दुरुस्त थियणु घुर्जे। सूबनि जी सरहदुनि में तब्दीली बाबति क़ौमी असेंबली तरमीम नथी करे सघे। सदर बि तरमीम ते सूबे जी मंज़ूरी बिना सही नथो करे सघे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे जेकॾहिं क़ौमी असेंबली सिंध जे विरहाङे बाबति को ठहराउ मंज़ूर कयो त सिंध असेंबली पहिरें ई अहिड़े ठहराउ खे रद्द करे चुकी आहे। सिंध जे माण्हुनि बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे ऐं असां सिंध जे अवाम सां गॾु बीठल आहियूं। टारगेट किलिंग ऐं स्ट्रीट क्राइम में घटिताई रेंजर्स जी कार्रवाईअ जो नतीजो आहे। पाबंदी मुड़ियल तंज़ीमुनि जूं सरगर्मियूं ऐं रुपोस जवाबदार सिक्योरिटी लाइ ख़तरो आहिनि। अमुन अवाम जे जान ऐं माल जे तहफ़ुज़ लाइ रेंजर्स जी मौजूदगी ज़रूरी आहे। सिंध असेंबली रेंजर्स जे सूबे में मुक़ररी वारे मुदे में 1 साल जी वाद जो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ जे मतन में चयो वियो आहे त रेंजर्स पुलिस सां गॾु इंटेलिजेंस बुनियाद ते थींदड़ ऑपरेशन में अहम किरदार अदा कयो। सिंध में 20 जुलाई 2026 खां 19 जुलाई 2027 ताईं रेंजर्स मुक़रर रहंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमनी हुसैन खिलाफ़ कार्रवाई करण वारे सऊदी अरब जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सक्यूज मूजिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप सां फोन ते राब्तो करे हुसैन खिलाफ़ कार्रवाई जी दरख़्वास्त कई हुई जेका ट्रंप रद्द करे छॾी आहे। ट्रंप इंतज़ामिया मूजिब अमरीका रुगो सऊदी अरब खे यमन में हदफ़नि बाबति ॼाण फराहम कंदो। वॉशिंगटन जो हुसैन खिलाफ़ हिन वक़्तु फ़ौजी कार्रवाई जो इरादो न आहे। यमनी हुसैन पारां सामूंडी गज़रगाह बाबुल मदब ते कब्ज़ो करण जी दावा आलमी वापार में वॾी रंडक पैदा थियण जो ख़दशो। यमनी हुसैन मूजिब बाबुल मदब वेझो अल उमरी फ़ौजी अॾे ऐं ज़कर बेट ते कंट्रोल करे वरितो आहे। हाणे बाबुल मदब खे बंदि करण जो अख़्तियार बि हुसैन वटि आहे। पीटीआई जमत उलमा इस्लाम खे 27 सेप्टेम्बर वारे लॉन्ग मार्च में शिरकत जी दावत ॾेई छॾी। चेयरमैन बैरिस्टर गौर जी क़यादत में पीटीआई वफ़द जी जे यू आई सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात 27 सितंबर 2022 कानून के हुक्मरानी आयन के बाला दस्ती तहरीक तहफुज आयन पाकिस्तान पारा ए पी सी कोठायण के ख्याल की डे बैरिस्टर गौर चया है 27 सितंबर वो एतजाज मुलतवी करण की का भी तजवीज़ गौर वट ना न वरी हुकूमत से कई गालू थी एतजाज की क्यादत सोहेल आफरीदी कद जैमें सब सियासी पार्टी शिरकत कद घर वजीर मोहसिन नकवी से बैकडोर चैनल से राबो रो है तफसील नथा बुधा सकजन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो चवण हो तो मुलाकात दौरान नवन सूबन के क्याम ए पी सी समेत मुख्तलिफ मामलों से गाल बोल थी। सिटी काउंसिल कराची सिंध में नवा इंतजामी यूनिट्स ठाण खिलाफ ठहराव मंजूर कर वरतो। मेंबर्स सिंध एक हुई एक सदा एक ही रही बोली के बुनियाद से नफरतुन के हथी न डनी वी कराची का सूबो ठाण इंतजामी यूनिट्स जो गाल जो माजी लसानी बुनियादी बुनियादन से बदल है। जमात इस्लामी के मेंबरन जो जमीन के मामले से एतजाज डेस्क भी नारेबाजी मेयर मुर्ज़ावाब डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद अजलास छे हलिया वाया। मुर्ज़ावाब जो चवण है तो बुधाया वे तो नूर हक इदारो कें जमीन से ठहल है ये वह मुनाफ़िकत है जिलाफ़ आया मुनाफ़िकत के वाखो किया वो
2: मोहसिन नकवी अवामी नुमाइंदो है को मोहसिन नकवी की पैंजी इया कैपेबिलिटी को यूनियन काउंसिल जो चेयरमैन थी सके थापियल सीट ते सेनेटर है मुल्क के वसाइल से कब्जे करने की मनसूबाबंदी है।
0: मोहसिन नकवी की का जाती हैसियत न है वह न चूंडियल नुमाइंदो है न ही का यूसी खटन की हालत रखे तो जो है सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद मोमन सुमरे मटियारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे है सिंध इन वक्त साजिशन मसलन के वर चढ़ियल है सूबन बाबत बयान वसीलन से कब्जे की रथाबंदी समझू था। एमक्यू ए पाकिस्तान सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम वारो बिल सिंध असेंबली सेक्रेटरेट में जमा कराए छो मेयर चेयरमैन के एडमिनिस्ट्रेटर तौर मुकर्र कर सख्त मुखालफत चूंडियल मेयर चेयरमैन के बाख्तियार मकानी हुकूमत जो इंतजामी सरबराह बनाने की तजवीज बिल में अख्तियार वसीला जिम्मेवार हेठी सतह से मुंतकिल कर मुतालबो किया वो। एमक्यू ए पाकिस्तान है बलदियाती इदारन से अणजूडियल एडमिनिस्ट्रेटर मुड़न बदर गैर जानबदार सिविल सर्वेंट के एडमिनिस्ट्रेटर बनाया वे जहां कम की जिम्मेवारी बलदियाती हुकूमत के दिनी वे उन सा गड माली वसीला भी फराहम कया वन।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: वज़ीर आज़म मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग जो नोटिस वरतो कें भी इलाके में बिन कलाकन का वधीक लोड शेडिंग न करण की हिदायत। बिजली की लोड मैनेजमेंट ते जायजा इजलास दौरान शहबाज शरीफ बिजली की लोड शेडिंग ते कावड़ जो इज़हार कंदे चयो त कें भी इलाके में बिन कलाकन का वधीक लोड शेडिंग न कई वञे। सिंध असेंबली के मेंबर जो सिंध में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग खिलाफ एहतजाज। स्पीकर अवेज कादर शाह समूरन बिजली कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के 23 सितंबर से कमेटी इजलास में घुराने की हिदायत कर छी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिली नामेमण है तो लोड शेडिंग पानी बिजली वारे वजारत की नाहली है। पाकिस्तान में गवर्नेंस की नाकामी जो आला तरीन मिसाल है। हेस्को सेपको ए के इलेक्ट्रिक जड़ा इदारा आवाम के बुनियादी सहूलतू दियण में नाकाम थी चुका है। सिंध में 18 कलाक बिजली बंद कई वे इो मसलो कौमी असेंबली ए सेनेट में भी भरपूर अंदाज में उथारो वे। रुगो बिजली न पर आवाम के गैस ए पानी जहा मसला भी दरपेश हैं। स्पीकर बिजली कंपनीज के सरबराहन के घुराने की हिदायत कंदे घरू वजीर के उनते अमल दरामद न आया तवा के तकलीफ डींदी।
1: डाउल हक ने आठवीं तरमीम में आईन को बदला और उसमें होता था कि नेशनल असेंबली सूबों की अगर उन्होंने बाउंड्रीज चेंज करनी है उसका कोई आईनी तरमीम से ही हो सकती है। उसके अलावा अगर ऐसी कोई आईनी तरमीम करनी है
0: सूबन के सरहदन बाबत कौमी असेंबली आईनी तरमीम नथी करे सके। तरमीम लाए सूबाई असेंबली में भांगे 3 की अक्सरियत जरूरी है। ज़ियालक अठी तरमीम जरिए आईन के तब्दील कयो हो जैके दुरुस्त थियण घुर्जे। सूबन के सरहदन में तब्दीली बाबत कौमी असेंबली तरमीम नथी करे सके। सदर भी तरमीम ते सूबे जे मंजूरी बिना सही नथो करे सके। कराची में मीडिया से गालंदे वडे वजीर मुराद अली शाह चयो आहे त जेकॾहिं कौमी असेंबली सिंध जे विरांगे बाबत को ठहराव मंजूर कयो त सिंध असेंबली पहिरीं अहिड़े ठहराव खे रद्द करे चुकी आहे। सिंध जे माण्हुनि बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे ऐं असां सिंध जे आवाम सां गॾु बीठल आहियूं।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
3: किताबे लेके निकले हम अम्मी ने कहा ना रुकना तुम रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: सिंध जो थर कुदरती वसीलन ऐं फितरती सूंह सां मालामाल आहे। सिंध जो आगाटो थर हिंदुस्तान ऐं पंजाब ताईं वसी हूंदो हो। हाणोको सिंध जो सहरा तक़रीबन 22,000 खां 24,000 चौरस किलोमीटर ते मुश्तमिल आहे, जेको घोटकी जे मैदानी इलाइक़नि खां शुरू थिए थो। अछड़े थर जे भिटनि, ढोरनि, डंडनि खां थींदो, चोटियारी मां तरंदो ऐं नगर पार्कर जूं चोटियूं पार कंदो वञी थर पार्कर जे थुअर ताईं पुॼाणी करे थो। थर रुगो वारी जे भिटनि जो ई नालो न आहे, पर कुदरती वसीलनि ऐं फितरती सूंह सां टिमटार ही इलाइक़ो आहे, जिते मैदानी इलाइक़ा, रेगिस्तानी भिटूं, मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा वण, ॿूटा, जड़ियूं ॿूटियूं, ढंढूं, ढोरा, पहाड़ी इलाइक़ा ऐं ॿेला शामिल आहिनि। विख विख ते थर अव्हां खे सोन वरनो थी मिलंदो। कुदरती तौर ते नगर पार्कर जी जाबलू पटी ग्रेनाइट जहिड़नि रंग बिरंगी क़ीमती पथरनि सां भरियल आहे। इस्लाम कोट में कारो सोन याने कोयलो मिले थो। डीपलो जो इलाइक़ो लूण जे खाणनि सां मालामाल आहे। अछड़े थर में गैस ऐं तेल जा ज़ख़ीरा मौजूदु आहिनि, जिन ते कम करण ऐं कुदरती व मैदनी वसीलनि मां फ़ाइदो वठण जी ज़रूरत आहे।
1: सिंध जो थर जेको सूंह, सकाफ़त, तहज़ीब ऐं तारीख़ सां मालामाल आहे। थर जा केतिरा ई पासा आहिनि, थर में केतिरो ई हुसन आहे जंहिं ते कमु करे सघिजे थो। थर जेको सरसब्ज़ बि आहे, थर जेको अछड़ो थर बि आहे।
2: जेको असली थर आहे ऐं उनजे अंदरि कोयलो बि निकितो आहे इस्लाम कोट में, ऐं उहो कोयलो कीअं थो यूटिलाइज़ थिए उहा तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे। ऐं कोयलो हितां निकिरे थो पियो, उहो सियालकोट थो वञे, उते बिजली जो थर्मल पावर ठहियो आहे। ॿियो जेको ॿ बिजली जा थर्मल पावर ठहिया आहिनि हिते, हिकिड़ो जेको कमु करे पियो, उनजी डायरेक्ट जेका बिजली जी ट्रांसफॉर्मेशन जेका कई वई आहे उहा लाहौर में कई वई आहे। त पहिरियां उहो ओॾे थी बिजली पहुचे पई ऐं पोइ उतां थी सर्क्यूलेट थिए पई। जॾहिं त आर्टिकल 258 जे मुताबिक़ जिते बिजली पैदा थिए थी ऐं जिते जेका आहे सा गैस निकिरे थी पई, उन सूबे जो उन ते इख़्तियार आहे। उहो ई सूबो उनजी पहिरियां जेको आहे उनखे यूटिलाइज़ करे सघे थो पियो ऐं उनखे विकिरो बि करे सघे थो, ॿियनि सूबनि खे ॾेई बि सघे थो पियो। पर हिते ईअं कोन्हे को, हिते गैस निकिरंदे, कोयलो निकिरंदे हिकदमि मर्कज़ जे हवाले थी थो वञे पियो। ऐं ज़ाहिर आहे त मर्कज़ उहो वञी मर्कज़ ते थो ख़र्च करे पियो। उनजे लाइ तव्हां ॾिसंदव त थर जे अंदरि न का यूनिवर्सिटी आहे, हिते थर यूनिवर्सिटी हुजणु खपंदी ऐं थर जे कल्चर ते जेका आहे सा निसाब हुजणु खपंदो हुयो, थर जे माण्हुनि जी रहणी कहणी ते जेका था हुजणु खपंदो, हिते जेका सा इंडस्ट्री हुजणु खपंदी, कोयले ते हलण वारे हाणे रेत बि हुते आहे, रेत मञा बहितरीन शीशो थो ठहे पियो, आइनो बहितरीन आइनो जेको आहे रेत मञा ईंदो ठहे पियो। चीननि जी जेका पहिरीं जेका टेक्नोलॉजी आहे उहो वारीअ मञा हुननि शीशो ठाहियो आहे, त अलाए केतिरो जेको आहे सो इहा इंडस्ट्री शीशे जी जेकॾहिं हिते अचे त सॼी दुनिया में बहितरीन क्वालिटी वारो शीशो जेको आहे एक्सप्लोर थी सघे थो ऐं उहो वञी सघे थो पियो, एक्सपोर्ट थी सघे थो पियो। पर ईअं न आहे त थर जी जेका खुंबी आहे उनजो तव्हां बोर्ड ॾिसो त केॾो ज़बरदस्त आहे, उहो सॼी दुनिया में एक्सपोर्ट थी सघे थी पई, पर न आहे। थर जो पिपू बहितरीन क़िस्म जो जेको आहे सो उहो तव्हांजो सलाद आहे, ऐं सलाद तौर तव्हां हुनखे धोई ऐं सॼी दुनिया में सर्कुलेट कयो त हुन में केतिरियूं मिनरल्स आहिनि, उन ते बि कुझु कोन्हे को। थरनि जी हालत तव्हां ॾिसो, उन्हनि जो सवाइ अॼु बि वसकारे जे ॿियो को सोर्स ऑफ इनकम कोन्हे को, काई बि हुननि। हाणे हिन वक़्तु तव्हां थर ॾिसो वञे न, हींअर जेका बहार जी मौसम आहे, रोहिड़े जो के गुल कढिया आहिनि, सॼो थर तव्हांखे हींअर ॻाढ़ो नज़र ईंदो। हे दुनिया जो यूनिक क़िस्म जो थर आहे। हिते जेके वण आहिनि, बुगर जहिड़ो जेको वण आहे उहो हिते हिन जेको आहे सो हिन थर में थो थिए पियो, रोहिड़ो हिन में थो थिए पियो, कुंभट हिन में थो थिए पियो। कुंभट जॾहिं जेका शेख आज़ पंहिंजे सवाने उमिरि में लिखियो त जॾहिं मां थर वेंदो आहियां त कुंभट जा वण मूंखे ईअं लॻंदो थर वारा माण्हू अछा पटका पायूं बि था, हुनजा अछे क़िस्म जा जेके आहिनि से गुल आहिनि कुंभट जा।
3: थर साईं इहो
4: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पंजनवरियन जी दुआ अंसारीअ जो पुराणे तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो वाकियो शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो वियो त ॿारी सां ज़्यादती तस्दीक थी जवाबदार कासिम कंडवाणीअ खे गिरफ़्तार कयो आहे जंहिं ॾोह जो इतराब कयो आहे वधीक जांच करे रहिया आहियूं
4: रिकॉर्ड क़ाइमु करे वरितो पंजे ॾींहनि ते पेट्रोल महांगो करण जो सिलसिलो बरक़रार पेट्रोल वधीक 5 रुपया 2 पैसा महांगो थियण बाद 375 रुपया 82 पैसा फी लीटर थी वियो डीज़ल 5 रुपया 28 पैसा महांगो थियण बाद 403 रुपया 32 पैसा फी लीटर ताईं पहुची वियो ट्रांसपोर्टर्स डे पेट्रोल महांगो थियण जो जवाबु ॼाणाईंदे भाड़नि में घाटे टोड़ बात करे छॾी खाद खुराक वारनि शहरनि जा अघ बि वधी विया शहरी सख़्त परेशान सफ़र में शहरीता जो एहतियात अलामती जनाज़ो बि कढियो वियो
3: इंसाफ जी वक्त सिर्फ़ रामी ज़रूरी आहे ज़िली अदालतुनि ऐं हाई कोर्ट्स में राब्तनि खे बि बहितर करणो पवंदो सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस यया आफरीदी चयो आहे त ज़िले अदालतूं इंसाफ़ वारे निज़ाम में करंगे जी हॾीअ वारी हैसियत रखनि थियूं नौजवाननि जजिस बहितरीन अंदाज़ में इंसाफ़ जी फ़राहमी यकीनी बणाइनि

0: आमिर ज़िया जे दौर में जमहूरियत जे बहाली वारी तारीख़ दौरान शहादत माणींदड़नि जी अॼु 43 वर्सी मल्हाई पई वञे। वारसन ऐं पीपी अगौणनि जी खैरपुर नाथन शाह में 12 सेप्टेम्बर जे शहीदनि जे मज़ारनि ते हाज़िरी शहीदनि खे भेटा पेश। पीपल्स पार्टीअ जे अॼु शाम केन शाह में जलसो बि थियल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।

0: पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
0: जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो
1: मुंहिंजो बेठा साईं कहिड़ा हाल आहे ठीक आहियो त बि सही आहे वांजी उमेद अला ताला तव्हां सभिनी मुंहिंजे बारे में महिनरनि आख़िर ख़ैरियत कई हूंदी असांजी दुआऊं तव्हां सां हर वक़्त ऐं हर हंधि गॾु गॾु हूंदियूं आहिनि अला ताला तव्हांखे सदाई ख़ुशि ऐं आबाद रखे कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं ॾिसो सदाई खिलंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं ऑनियर कयो वेंदो आहे पर शेड्यूल तब्दील थियण जे करे हाणे तव्हां प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती हर छंछरु जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ॿुधी सघंदा ऐं हीउ हफ़्तेवार प्रोग्राम आहे हफ़्ते में हिकिड़ो दफ़ो थींदो आहे जेको पहिरियां जुमे जे ॾींहुं थींदो हुयो हाणे छंछरु जे ॾींहुं 11 वॻे खां 1 वॻे ताईं हीउ ऑनियर कयो वेंदो हिन प्रोग्राम में छा हूंदो आहे हिन प्रोग्राम में हूंदो आहे तव्हां सां मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं उनखां अलावा तव्हांजा मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस ऐं उनखां अलावा तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीक़ी जेका तव्हांखे दिलि फरेब मौसीक़ी लॻंदी आहे अॼोकी प्रोग्राम में बि सेम ईअं ई आहे तमामु बहितरीन मौसीक़ी आहे ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदा त हुनखे 4 चंड लॻी वेंदा तव्हांजो मैसेज असांजे प्रोग्राम जी सूंहं हूंदो ऐं मैसेज करण जे लाइ तरीक़ेकार सवलो आहे आसान आहे पंहिंजे मोबाइल फोन जो राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर नालो लिखी करे मोकिलियो असां 888

तव्हांजो मिठा साईं, असां सां न सिर्फ़ मोरो वारा बल्कि पूरे नेटवर्क जा समूरा जेके लिसनर्स आहिनि उहे कॾहिं सखर लालकाणू मीरपुर ख़ासि मोरो मटियारी मातली सकरंड ऐं मेरापुर वारा बि प्यारा प्यारा माण्हू असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। मूंखे यादि आहे त मुंहिंजो जेको जुमे वारो शो हूंदो हुयो हुन में तक़रीबन सभिनी स्टेशनुनि तां मैसेज ईंदा हुआ, पर जेको अॼु ई मुंहिंजो पहिरियों शो आहे ॾिसूं था त जेको 11 वॻे खां 1 वॻे ताईं छंछर जे ॾींहुं हाणे थींदो त ॾिसूं था उन में उहे जेके मुंहिंजा जुमे वारा लिसनर्स आहिनि छा उहे मैसेज करे ऐं मूंखे ॿुधाइनि था त वाह असां अञा थोरी ॿुधूं पिया था। ऐं जेके रेडियो जा असांजा पुराणा लिसनर्स आहिनि जेके सदा ई असां सां जुड़ियल रहंदा आहिनि त उन्हनि खे उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो स्पेशल प्रोग्राम आहे, उन्हनि जी पसंदि जो प्रोग्राम आहे, उन्हनि जी पसंदि जी हिन में मौसीकी हूंदी, उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल हूंदी। ऐं उन खां अलावा हिन प्रोग्राम में ईंदड़ जेके असांजा शो थींदा उन्हनि में मां कोशिशि कंदो आहियां, हिकु त लाइव कॉल खां यकीन कयो मां ख़ुदि हिनखे अवॉइड कंदो आहियां त लाइव कॉल न कयां, न दोस्तनि सां मैसेजनि ते कचहरी कयां, पर ईंदड़ वक़्त में अगरि ज़रूरत महसूसु थिए त तव्हांजी हिन शो में लाइव कॉल बि कयो वेंदो, पर अॼु लाइव कॉल न आहे, अॼु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मैसेज आहे। त मैसेज करण जो तरीक़ेकार हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे मां ॿुधायां थो त पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एम आर ओ लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जे शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो।

त प्रोग्राम जे आगाज़ में हदीका कयानी जो खूबसूरत आवाज़ आहे उहो शामिल कंदासीं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो आहे कलाम। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंह जे उन्हनि अज़ीम शख़्सियतुनि मां हिकु अथव जिन पंहिंजी शाइरी फ़िक्र ऐं सूफ़ियाना तालीमात वसीले सिंध जी सकाफ़त ॿोली ऐं इंसान दोस्तीअ खे अमर बणाए छॾियो। शाह साहिब जो नालो सिंध जे तारीख़, अदब ऐं रुहानियत में वॾी इज़त ऐं एतराम सां वरितो वञे थो। ऐं संदसि शाइरी रुगो न सिर्फ़ु सिंध जे माण्हुनि लाइ पर सॼी इंसान ज़ात जे लाइ मोहबत ऐं अमन ऐं भाईचारे ऐं सचाई जो पैगाम खणी ईंदी आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध जो सिर्फ़ु शाइर न पर सिंध जी रूह, सकाफ़त ऐं फ़िक्र जो अज़ीम तर्जुमान आहे। संदसि शाइरी सिंध जी सुञाणप ऐं इंसान इंसानियत लाइ जे करे चइजे त हिकु लाज़वाल पैगाम आहे। ऐं जेसिताईं सिंध जी ॿोली ऐं सिंध जी सकाफ़त ज़िंदा रहंदी न तेसीं ताईं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो नालो ऐं फ़िक्र बि हमेशह ज़िंदा रहंदो। त अचो गंजी इंजॉय कयूं था हरीका कयानी जो ही ख़ूबसूरत आवाज़।

अधिका कंहिं जो ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं अव्हांजी सुंदर समातूं त मुंहिंजा मिठा साईं दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि उनखे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदा रहंदासीं घोटु दूरो ख़ान भेण खां शौकत अली भेण पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे वॾी महिरबानी अदा शौकत तव्हांजो मैसेज मुंहिंजे प्रोग्राम जुमे वारे में बि ईंदो आहे ऐं छंछर वारे प्रोग्राम में बि आयो आहे तंहिंजो मतिलबु तव्हां जीअं FM 88 नेटवर्क जा रेग्यूलर लिसनर आहियो महिरबानी मिठा तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो नादुर अली भेण खे उन सां गॾु आहे अली गुल भेण उन सां गॾु आहे ऐं चवनि था अदा आपका शो बहुत अच्छा आहे ऐं मास्टर मंज़ूर जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे त हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं मास्टर मंज़ूर जो कलाम बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ऐं उनखां अलावा असांजे प्रोग्राम में शामिलु आहे मोरो शहर जे कलोड़ा कॉलोनी खां फैज़ान अली कलोड़ो ऐं फैज़ान चवे थो त सर तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे ऐं वॾी महिरबानी फैज़ान साईं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो उनजे लाइ खोड़ सारियूं मोहबतूं ऐं खोड़ सारो प्यार तव्हांजो ऐं तव्हां पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे शो में शामिलु थिया आहियो त अहिड़े ई तरीक़े सां ॿिया बि दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि उन्हनि बि शामिलु कंदासीं पर वक़्तु थिए पियो ब्रेक जो त हलंदासीं शॉर्ट ब्रेक जी तरफ़ ऐं ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं वापसि अची करे शामिलु कंदासीं तव्हांजा मोकिलियल मैसेज ऐं अव्हांखे ॿुधाईंदासीं तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीकी।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजनि में चवनि प्यारनि भाउरनि ऐं भेनरुनि खे प्रोग्राम में भलीकार ऐं दोस्तनि सां माज़रत, काफ़ी ॾींहंनि खां वठी ज़ुकाम ऐं गलो ख़राबु आहे, जंहिंजे करे मुंहिंजो आवाज़ु थोरो तव्हांखे अॼु तब्दील महसूसु थींदो हूंदो त गलो ख़राबु आहे बाबा, ऐं सर्दी अची रही आहे, थोरो थोरो वेझो थींदी पई वञे ऐं गर्मी जेका आहे न उहा थोरो थोरो परे थींदी पई वञे। हाणे जॾहिं इहा सर्दी वेझो ईंदी आहे ऐं गर्मी परे थींदी आहे त हिन जे विच वारो जेको टाइम हूंदो आहे न उहो असां सभिनी जे लाइ सिहत जे हवाले सां ॾाढो संगीन हूंदो आहे। जेकर थोरो बि लापरवाही थी वई न त पोइ इहो मुआरो ई कमु हूंदो आहे, गलो ख़राबु हूंदो ऐं तव्हां पोइ ॻाल्हाए बि न सघंदा। त एहतियात छा करिणो आहे, एहतियात इहो करिणो आहे त भई थधे पाणीअ खां थोरो पंहिंजे पाण खे बचायो, जेके तमामु थधियूं शयूं आहिनि उन्हनि जो इस्तेमालु घटि कयो। बर्फ़ जो त इस्तेमालु मुंहिंजे ख़्याल में त सफ़ा ई न कयो, अगरि फ्रिज जो पाणी पियो था त बि उहो नॉर्मल टेम्परेचर ते हुजे, उहो इस्तेमालु कयो। ऐं उन खां अलावा राति जे टाइम में जेके असांजा ॿाहिरि जा भेनरूं खुलियल आसमान जे हेठां आरामी थींदा आहिनि त खुलियल आसमान जे हेठां ईअं थींदो आहे त हिन वक़्तु राति जो टाइम में 12-1 वॻे खां पोइ राति ॾाढी सही तरीक़े सां थधी थी वेंदी आहे, त इन जे करे राति जो थधी थींदी आहे त पोइ ज़ुकाम थींदो आहे। त पंहिंजे लाइ का चादर ज़रूरु रखो ऐं उहा ओढ़ींदा कयो, ऐं चादर ओढ़ींदा त उन सां इहो थींदो जो तव्हांखे अहिड़े क़िस्म जी कैफ़ियत खां बची वेंदव जेका हिन वक़्तु मां जंहिं कैफ़ियत में आहियां। त दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि उहे बि शामिलु कंदा हलूं था।

गुलाब लिगारी जो गोठ है विशाम खान रिंद खां असो प्यारो भा शायर गाजी खान रिंद जो मैसेज आयो है उन फिजान ले रिंद चवन था सर दिल खुश कर दी आपने फरमाइश पूरी कर हाजिर था फरमाइश तहजी जरूर पूरी थी हाँ पूरी कर दिल जाए बेहतरीन खुशबू लिगारी जो आवाज़ ढो सुठो है कोशिश कदस मुझे लाइब्रेरी में खुशबू लिगारी जो जो को सॉन्ग है को सुथड़ो पियल है तुम बुधाया तो जरूर बुधाईदास एक गाल याद रखो न सिर्फ तुम बल्कि जो भी असा लिसनर्स हैं उ समूरा असो सरमा अव सरमायो भी इन्हीं है जो अगर लिसनर है तो रेडियो है ना मुझे साई तो लिसनर्स के तमाम घनी अहमियत दिना उसे तमाम घनी अहमियत भरिया हूँ खुशबू लिगारी तवे जरूर बुधाईदे तुम उन दिल जाए हलूँ था कें बे दोस्त के मैसेज की तरफ तसा गड है केर है चवे तो सलाम गुलाब भाई आप कहाँ गुम थे शो नहीं करते थे अच्छा 78 मोरी का राजा हमीर चंद्र किशोर कुमार पवन कुमार टेलर मास्टर हीरा लाल आकाश कुमार जानी हाँ मुझे शो जो है ना वो फ्राइडे वाली जगह से सैटरडे से वो है सैटरडे से हाँ तक बुझी सकता इन सागे टाइम से जै टाइम असो शो हों उन सागे टाइम से तुझी सकता इंशाल्लाह ताला रेगुलर शो ही हलाइंदासे तहां दिल जाए कयो बाकी जुमेवार शो गुजरल बिन हफ्तन का वठी नथी सगियो हो उन जो सबब यो आए त ही गलो खराब है बुखार वाली कैफियत बाबा असा भी बीमार थिना हो एड़ी गाल ना है रुगो ता ना हो थिंदा त असा सा गड आहे एहसान जान सहर दी माड़ी अच्छा यो सहर दी माड़ी यो किथा का है मुखे इन गाल समझ बिल्कुल भी कोन आई है त एहसान जान ता मुखे बीहर मैसेज कजो जे में वाजे तौर जो है न लिखी करे बुधराए जो त पुलिस स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो जो मैसेज आयो चाहे तो भाईजान गाना बुधराए दा गाना ही गाना हलन पिया मुझे मिठा से ता दिल जाए कयो सजाद अली मकली ठटा खान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मुझे मिठा से मेहरबानी तवाजी ता में सने शो में शामिल थे आयो त इन वक्त खुशबू लिगारी जे आवाज जे तरफ हलंदा से आई उने खा पोई हलंदासी न्यूज़ ब्रेक के तरफ है।

0: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मैं गरीब हूँ ना, ऐसी मर जाऊंगा, कोई साथ भी नहीं देगा, ना शरीयत वाला अंदा दे मेरे को, इंसाफ तो मिलेगा नहीं ना, धक्का दो तुम्हारी भी जन्नत बनेगी।
2: पैसा के जो मुसलमानों की सजा मिले, आज ऐसा
3: टंडो आत मां गुजरियल ॾींहुं गुम थियल ॿारड़ीअ खे जिंसी ॾाढाई बाद क़तल करण जो इनकशाफ़। नींगरीअ जो लाश हथ जवाबदार अॾो जो एतिराफ़ करे वरितो। पुलिस मूजिबि अंजुम मलवासी पंजनि वरनि जी दुआ अंसारीअ जो पुराणे तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो। वाकियो शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो वियो त ॿारड़ीअ सां ज़्यादा जवाबदार कासिम कुंडवाणीअ गिरफ़्तार कयो आहे, जंहिं ॾोह जो एतिराफ़ कयो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं।

0: Nations Break. अच्छन वारन का परेशान आयो पेश आहे टी हुजे ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तैयारी हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्च क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख्सियत में आणियो नओ रंग नओ अंदाज ऐं नई ताज़गी अॼु ई पंहिंजे वेझे स्टोर तां आर्च क्रीम हेयर कलर हासिल करियो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾियो नओ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में खूबसूरती हर अंदाज में एतमाद
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज
3: हारी अथम मुसीबत में हिम्मत न हारी अथम अची न अची तू अंगण यार मोचे मुफ्तमी दई बेदिलिये के पांजी दिल मुफ्तमी चवा छो त के दिल अजारी अथम जोखे पंधन जो रिघो दास्तान आहे जोखे पंधन जो रिघो दास्तान आहे चरी दिल इए चई सुमारी अथम

तमाम ताईं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती हर छंछर जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं जी एफ एम नेटवर्क ते ऑन एयर कयो वेंदो आहे, जंहिंमें असां सां गॾु हूंदा आहिनि सखर लाड़काणो मीरपुर ख़ासि मातली मटियारी मोरो मेहरापुर ऐं सकरनि वारा प्यारा प्यारा असांजा लिसनर्स। ऐं असांजी हिन शो में हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं आहे पर मोकिलियल प्यार सारा प्यार भरिया मैसेजिस ऐं उन खां अलावा तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीकी। ॿुधाई तव्हां असांजे हिन प्रोग्राम में शामिल थी सघो था ज़रिया एस एम एस ऐं एस एम एस करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जो राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एम आर ओ लिखो स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी करे मोकिलियो असां 888-1 ते। दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि उहे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा था। ॻोठ उमेद अली ज़रदारी खां ग़ुलाम सरवर बागाई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो सर अला कंदो ख़ुशि हूंदव सदा अदा आमीन। अला साईं तव्हांखे बि ख़ुशि ऐं आवाज़ रखे। स्पेशली मां तव्हांखे भाउ ग़ुलाम सरवर बागाई साहिबु तव्हांखे पंहिंजे हिन शो में भलीकार चवां थो। थैंक यू वेरी मच, तव्हां असांजा पुराणा लिसनर्स आहियो, हमेशह असांजे प्रोग्रामनि में शामिल थींदा आहियो, थैंक यू। हुनजे लाइ शमन अली मीर अली जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे। त मुंहिंजा मिठा साईं शमन अली मीराली मां ऑलरेडी प्ले करे चुको आहियां, ॾाढो सुठो हिकिड़ो सॉन्ग हो, पर मां कोशिशि कंदुसि त तव्हांखे शमन अली मीराली जे कलाम शमन अली मीराली जो कलाम ज़रूरु ॿुधायां। ऐं अदा जन डेडिकेट जेको कंदा उहो बोरो खान लाखो आज़िज़ अमानुल्ला विस्तड़ो खे, त महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, थैंक यू वेरी मच, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया। ॻोठ दलेल खान ज़रदारी खां हाजी सावल ज़रदारी पंहिंजे प्रोग्राम ते पियो चए थो सर सलाम, प्रोग्राम वेरी नाइस, ऐं डेडिकेट करे थो ग़ुलाम सरवर बागाई बोरो खान लाखो खे। अदा सावल ज़रदारी साहब थैंक यू, लख एहसान लख कुर्ब तव्हांजा, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो, उनजे लाइ तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं खोड़ सारो प्यार अव्हां जे लाइ। ऐं असां सां गॾु आहे केरु आहे इल्ताफ़ अली गाडाही बलोच फ्राम कराची से, चए थो गुड मॉर्निंग भाई, हाउ आर यू डियर, आई एम फाइन, ऐं चवां था यूअर शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अदा तव्हांखे असांजो शो पसंदि अचे पियो, उनजे लाइ लख कुर्ब तव्हांजा एहसान, ऐं तव्हांखे मां पंहिंजे स्पेशली पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। ऐं लगारी अच्छा बिशाम खान रिंद खां शायर गादी खान रिंद जो ही टियों मैसेज आयो आहे, अदा तव्हांजी फरमाइश असां पूरी कई आहे ऐं उमेदु आहे तव्हां उन सॉन्ग खे इंजॉय कयो हूंदो, ॿुधो हूंदो।

मिठा साईं, ज़िंदगी हिकु डिघो सफ़र आहे जंहिंमें कॾहिं ख़ुशियुनि जा लम्हा अचनि था त कॾहिं ॾुख परेशानियुनि ऐं आज़माइशुनि सां मुंहुं ॾियणो पवे थो। हिन सफ़र में जेकॾहिं को सचो मुख़लिस ऐं वफ़ादार साथी गॾु हुजे त ॾुखिया रस्ता बि आसान महसूसु थींदा आहिनि। साथ सिर्फ़ कंहिंजे भरिसां बीहण जो नालो न आहे, पर साथ जो मतिलबु आहे ॾुख में हौसलो ॾियणु, ख़ुशीअ में ख़ुशि थियणु, मुश्किल वक़्त में हथ न छॾणु ऐं ख़ामोशीअ खे बि सम्झणु। सचो साथी उहो हूंदो आहे जेको वक़्त जे बदिलजण सां पंहिंजो रवैयो न बदिलाए। ज़िंदगी में दोस्त शोहरत ऐं आसाइशूं पंहिंजी जाइ ते अहम आहिनि, पर हिकु मुख़लिस साथीअ जी मौजूदगी उन्हनि सभिनी खां वधीक क़ीमती हूंदी आहे। जॾहिं इंसान मायूस थी वञे, रस्ता बंदि नज़र अचनि ऐं उमेद ख़तमु थियणु लॻे न, तॾहिं हिकु मोहबत भरियो जुमिलो ऐं हिकु सचो साथ इंसान खे ॿीहर बीहण जी ताक़त ॾेई सघे थो। जेको जुमिलो हूंदो आहे त तुंहिंजो हुजे साथ त सफ़र में थकावट महसूसु नथी थिए, त तुंहिंजो साथ हुजे त ॾुख बि अधूरा लॻनि था ऐं ख़ुशियूं ॿीणियूं थी वञनि थियूं, ऐं तुंहिंजो साथ हुजे त ज़िंदगी जी हर मोड़ ते उहो यकीन रहे थो त असां अकेला न आहियूं। ऐं ज़िंदगीअ जे हिन सफ़र में अहिड़ा माण्हू हमेशह साण हुजनि जंहिंजो साथ मतिलब परस्तीअ खां पाक, मोहबत सां भरपूर ऐं वफ़ादारीअ सां मज़बूत हुजे। त अहिड़ो ई ज़ाहिर करे रही आहे फरज़ाना परवीन बि। त अचो त फरज़ाना परवीन जो ई बहितरीन हिकिड़ो सॉन्ग ॿुधूं।

नंढड़ी ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर प्रोग्राम जे आख़िरी लम्हनि में तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी तरफ़ खां भलीकार आहे। छो जो प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुचण वारो आहे ऐं हीउ प्रोग्राम असांजो हर जुमे जे ॾींहुं जुमे ते पहिरियों ऑनियर थींदो हुयो, हाणे हर छंछर जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ऑनियर कयो वेंदो। ऐं GFM नेटवर्क जो प्रोग्राम आहे जेके असांजा लिसनर्स हाणे असांखे ॿुधण शुरू कयो आहे, त उन्हनि खे बि असां इहो ॿुधाईंदा था हलूं त हीउ जेको प्रोग्राम आहे, हीउ प्रोग्राम तव्हांजे पसंदि जो प्रोग्राम आहे, तव्हांजो प्रोग्राम आहे, ऐं इन में तव्हां शामिल थी करे असांखे हौसला अफ़ज़ाई कराईंदा। अहिड़ो ई असांजो हिकिड़ो भाउ जो मैसेज मुंहिंजे साम्हूं पियो आहे, दिलि चवे थी सभ खां पहिरियां हुनखे पढ़ां। वॾा भंड खां अली असकर भंड साहिबु पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो। सर, स्पेशली तव्हांखे मां पंहिंजे हिन नेटवर्क जे शो में भलीकार चवां थो। ऐं साईं अली असकर भंड साहिब जे बारे में जेकर समूरा लिसनर्स खे मां हिन जो इंट्रोडक्शन करायां, त जॾहिं खां मां रेडियो जॉइन कयो आहे तॾहिं खां वठी ही मुख़्तलिफ़ असांजे प्रोग्रामनि में मुंहिंजा जेके शो थींदा हुया या असांजे सीनियर्स जा जेके शो थींदा हुया उन्हनि में तमामु वध खां वधि शामिलु थींदो आहे। ऐं एतिरे क़दुरु रुगो शामिलु थियण न आहे पर हिन सां रेडियो वारनि जी एतिरी मुहबत आहे, हिन जी रेडियो वारनि सां एतिरी मुहबत आहे जो अदा जन सां असांजा पर्सनल तालुकात बि रहिया आहिनि, मुलाक़ातूं रहियूं आहिनि। ऐं तमामु घणो मां इंतिहाई थोराए थो आहियां तव्हां अली असकर भंड साहिब जंहिंजो जंहिंजा कुझु अहसान आहिनि जेके असांखे लाहे त कोन था सघूं पर ॻाईंदासीं ज़रूरु। त महिरबानी आहे अदा तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया। ऐं चवे थो सलाम, त वालेकुम असलाम या अली मदद, मौला अली मदद। चए थो अदा ख़ुशि आहियो जी, अदा शुक्र अलहमदिल्ला, खंघ ज़ुकाम खां सवाइ बाक़ी अलाह ताला फस्ट क्लास कयो आहे, थैंक यू तव्हांजी महिरबानी। ऐं चवे थो अलाह साईं तव्हांखे आबाद कंदो। ऐं अदा जन सलाम चवनि पिया सर हाकिम अली जिस्कानी साहिबु, अली अनवर भंड साहिबु, गुलाब खान भेण। ऐं चवनि था तुंहिंजी सिक सुहिणा सडरायो, अच्छा ममताज़ लाशारी जे आवाज़ में अदा जन फरमाइश कई आहे।

असांजे शो में ॻोठु उमेद अली ज़रदारीअ खां आहे ग़ुलाम सरवर बागाई। महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो, लख कुर्ब लख अहसान। ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम जी सूंहं बणिया, उन जे लाइ तमामु घणा असां तव्हांजा थोराए था।

मुंहिंजा बेटा ताईं प्रोग्राम जो वक़्तु बि पहुची वियो आहे। पंहिंजी पुॼाणीअ ते वञण खां पहिरियां हमेशह वांगुरु तव्हांखे चवंदासीं पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखो, पंहिंजनि दोस्तनि जो, पंहिंजनि मिटनि माइटनि जो ख़्यालु रखो। ऐं कोशिश इहा कयो त तव्हांजे दिलि मां कंहिंजे लाइ बि का बि अहिड़ी ॻाल्हि न निकिरे जेका हुनजी दिलि आज़ारी करे वठे। त पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा कंदव, पंहिंजनि दोस्तनि जो ख़्यालु रखंदव, त तव्हांजी ज़िंदगी बि खुशहाल थी पवंदी। ऐं पंहिंजे बचनि खे तालीम ज़रूरु ॾियो, ॾिनी हुई दुनियावी तालीम, ऐं नियाणियुनि खे बि ज़रूरु तालीम ॾींदा कयो। त वेंदे वेंदे मुमताज़ लाशरी जी ख़ूबसूरत आवाज़ तव्हांजी नज़र कयूं था, ऐं उमेद कयूं था त नेक्स्ट शो थोरी अगरि हयाती साथ ॾिनो त वरी पाण वेड़े तरीक़े सां गॾु हूंदासीं। तेसिताईं जे लाइ पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह वाही अलाह।

0: It's 1 p.m.
1: This is National Pakistan.

0: FM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: देगा ना। शरीयत वाला ना तो मिलेगा नहीं ना, धक्का दो तुम्हारी भी जन्नत बनेगी।
2: साहब के जो मुसलमानों की सजा मिले आज ऐसा
3: ट्रंड्रवाद मां गुजर डी गुम थियल बार एजेंसी ॾाढा ये बाद कत्ल करण जो इनकशाब नींगरीअ जो लाश हथ जवाबदार गिरफ़्तार ॾोह जो इतराफ़ पुलिस मूजिबि अंजम मलवासी पंजनि वरनि जी दुआनसारीअ जो पुराणे तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो वाकियो शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो वियो त ॿाड़ीअ सां ज़्यादती तसदीक थी जवाबदार कासिम कंडवाणी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे जंहिं ॾोह जो इतराफ़ कयो आहे। वकीलनि जो नींगरीअ जे क़तल वारे वाके ख़िलाफ़ एतिजाज तालका इस्पताल में सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो।
4: इराक में तेल जी लाइन ते हमलनि बाद सऊदी वॾे वज़ीर फैसल बिन फरहान जो इराकी हम मुनसिब सां फोन ते राबितो ॿिनि तरफ़ लाॻापन समेत आज़ी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। इराकी परॾेही वज़ारत मूजिबि ॿिन्ही अॻवाणनि खे तेज़ी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं राबतनि में रहण ते बि इतफ़ाक़ कयो।
3: यमन जे हुसैन बाबिल मंदब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आबी रस्ते में गश्त शुरू करे छॾियो। बाबिल मंदब जे आम बेट मेवन ते बि कब्ज़े जी दावा यमनी फ़ौज चयो आहे त मुखा ऐं बाबिल मंदब में हुसैन जे थाकनि खे बमबारी कई आहे जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे।
4: आमने अरमुज़ ते अरब मुल्कनि सां ॻाल्हियूं सूमर वारे ॾींहुं ओमान में थींदियूं ईरान तसदीक करे छॾी। इस्माइल बकाई चयो आहे त आमने अरमुज़ जो कंट्रोल ईरान वटि आहे। तेल क़ीमतनि में वाध जो ज़िमेवार बि अमेरिका आहे। असां जंग वारी हालत में आहियूं। सऊदी अरब उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा।
3: हुकूमत पेट्रोल महांगो करण जो नओं रिकॉर्ड क़ाइम करे वरितो। पंजे ॾींहं बि पेट्रोल महांगो करण जो सिलसिलो बरक़रार। पेट्रोल वधीक 5 रुपया 2 रुपया पैसा महांगो थी वियो। 375 रुपया 82 पैसा फी लीटर मुक़रर। जॾहिं त डीज़ल 5 रुपया 28 पैसा महांगो थियण बाद 403 रुपया 32 पैसा फी लीटर ताईं पहुची वियो। ट्रांसपोर्टर्स बि पेट्रोल महांगो थियण जो जवाबु ॼणाईंदे भाड़नि में घाटे टोड़ वाध करे छॾी। खाद खुराक वारनि शयुनि जा अघ बि वधी विया। शहरी सख़्त परेशान। सखर में शहरी इतिहाद जो एहतजाज अलामती जनाज़ो बि कढियो वियो।
4: इंसाफ़ जे मक़सद फरामी ज़रूरी आहे। ज़िली अदालतनि ऐं हाई कोर्ट्स में राबतनि खे बि बहितर करणो पवंदो। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस आफरी चयो आहे त ज़िले अदालतूं इंसाफ़ वारे निज़ाम में करंगे जी हॾी वारी हैसियत रखनि थियूं। नौजवान जजिस बहितरीन अंदाज़ में इंसाफ़ जी फरामी यकीनी बणाइनि।
0: GA FM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

जी क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कलाम कि आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत से लोग, खूबसूरत से लोगों को खूबसूरत सी महफिल में वेलकम कहते हैं। और अगर आप भी हसीनों खूबसूरत बनना चाहते हैं तो जनाब खूबसूरती की दुनिया में जरा कदम रखिए और सुनिए हमारा प्रोग्राम, ताकि आप लोगों को इस चीज का पता चल जाए कि यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बातें की जाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जो बातें की जाती है वो इतनी ज्यादा जबरदस्त होती है कि भाई आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके वो तमाम जो चीजें हैं खूबसूरती के मामले में जो कि आप लोग जरा पीछे हैं, भाई आप लोगों को कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, कोई आप लोगों को गाइड करने वाला नहीं होता, तो भाई आप हमारे प्रोग्राम से बहुत सारी चीजें मालूम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और उसके बाद अपनी खूबसूरती को एनहेंस कर सकते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है वो जरा सबसे पहले बता देते हैं। तो आज की जो सवाल का टॉपिक होने वाला है वो कुछ इस तरह से होने वाला है, आज पहेली है या फिर ऐसे सवाल समझ लें, बस जो भी है बस आसान सा होने वाला है। तो आप मुझे ये बताइए कि जनाब कौन सा जानवर है जो काले रंग का दूध देता है। भाई आप लोगों ने ये थोड़ा सा हमें सुनने में मतलब ऐसा ना थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई हमेशा हमने देखा है दूध तो भाई व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का होता है, लेकिन ऐसा भी एक दुनिया में जानवर पाया जाता है जो काले रंग का दूध देता है। बिल्कुल जी, आप लोग मुझे उसका नाम बताने वाले, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। और जी लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जैसे आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं लाइक का सबसे पहले इसलिए कहती हूँ क्योंकि बहुत से लोग बड़े कंजूस होते हैं, वो पोस्ट को लाइक ही नहीं करते हैं, तो भाई लाइक किया करें, कमेंट किया करें, उसके बाद आप शेयर किया करें, ये तीनों काम आप लोगों के हिस्से के हैं, तो जल्दी जल्दी से अपने हिस्से का काम निपटाइए और टॉपिक को फॉलो कीजिए। अच्छा मुझे आज आप बताने वाले हैं कि वो कौन सा जानवर है जो काले रंग का दूध देता है। हाँ जी, उसका दूध जो है वो ब्लैक कलर का है। मुझे जल्दी से जवाब बताइए और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है तो भाई आपको वेलकम कहा जाता है, जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं, और अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर किया करें, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले लोग जो हैं वो बड़े सेटिस्फाइड हो चुके हैं, क्योंकि जिंदगी में अगर देखा जाए तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वैसे ही होते हैं, तो जिंदगी में स्किन के प्रॉब्लम्स को जरा थोड़ा कंट्रोल में रखिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर एक प्रॉब्लम का हल है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटिन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तैयार हुई है जनाब। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। आप जब अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए तो वहाँ से नाम लेकर पाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुई है तो उसके लिए आपको नंबर बताऊंगी, उस नंबर के ऊपर आप रब्ता कीजिएगा। तो नंबर क्या होने वाला है जनाब, नंबर है 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह पंजवीह 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल कंदा, पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो, पंहिंजे खूबसूरती में इज़ाफ़ो आणियो बाबा, खूबसूरत रहण ऐं खूबसूरत ॾेखारण हर कंहिंजो हक़ हूंदो आहे, सो तव्हां बि पंहिंजो हक़ सां वठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणु स्टार्ट कयो, ठीकु आहे। ऐं यहां पर हमारे साथ गुलाम फातिमा मौजूद है जी, गुलाम फातिमा चन्ना हमें सुन रही है, और बल्कीस चन्ना हमें सुन रही है, अब्दुल कदीर चन्ना हमें सुन रहे हैं, कुरेशी गोट सखर से आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। गुलाम फातिमा तो भाई छोटी सी हमारी लिसनर है, बड़ी हमारी पक्की वाली लिसनर है तो वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच, आप हमारा प्रोग्राम इतने शौक से सुनते हैं। और जी फरवा गुल हमें ज्वाइन कर चुकी है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आपी, आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसे। और बरकत रमतानी जमाली बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, और बलोचिस्तान से आप हमारे साथ मौजूद हैं।
और ये हमारे साथी फरवा कहती हैं, आप ही सॉन्ग रिक्वेस्ट है, भले महबूब कर माना लगी तो प्यारा जी काबिल, डेडिकेटेड स्पेशली आप और तमाम लिस्टनर्स के नाम। ओके जी, डन हो गया। और फहीम भाई हमारे साथ कहते, फहीम शेख विसरी सारो लोक, विसरे सारो लोक शालन ना विसरी तू, तोखे के डो मुंह सांढ्यो आहे साह में। वाह वाह वाह वाह वाह, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अदर अदा चाल आहे, खुश आयो सफा चा कुसलेट कलम मस जी डी इजाफो थी वियो। कहते प्रोग्राम त लाजवाब आहे अमा वांगे, थैंक यू सो मच प्यारा सोना भा, तमान यो हाल हवाल देश किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोन आई, तमान गानो लिखियो बिल्कुल ताजो गानो बुधू था बाबा गज्जी करे बुधनासी। और हमारे साथ है ये रशीद खोसो भाई, कहां से सुन रहे हैं, इब्राहिम शाह बुखारी दरगाह से आपका शो सुन रहा हूँ, और हैदराबाद से भी, अच्छा हैदराबाद से मतलब आप हैं, कटे सटे कहते हैं आपका प्रोग्राम नाइस है, कोई भी सिंधी सॉन्ग मुमताज मलाई का सुनाइएगा, हाजिर हाजिर। और फहीम भाई कहते हैं वाह दादा तमाम बेहतरीन कलाम आए। और चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो, हाउ आर यू, हो फाइन बेटा, माँ सफा ठीक है चाचा, तमाम पानी हाल हवाल बुखारे तबियत जो दस्यो की आयो ठीक ठाक। और किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट हाजिर आहे, स्मार्ट भाई वेलकम वेलकम, कहते तू खूबसूरत मानो जो जिक्र कंदो आही पोई पाण डे समझां तो, हा भली तां पाण डे समझो तमाम जलाई चवंदी आया। अच्छा मोहम्मद जमान भाई कहते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय स्वीट बुआ जी, शो वीआईपी है हमेशा की तरह, थैंक यू वेरी मच, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। और चाचा खालिद क्या कहते हैं,

0: बिल्कुल जी, डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात है, चाचा खालिद कह रहे हैं कि मेरी तबीयत में मजा नहीं रहता आजकल, फिर भी आपका डे स्किन ब्यूटी शो जरूर देखता हूँ, बस आप मेरे SMS रीड किया करें। बिल्कुल जी चाचा, आपके मैसेजेस रीड रखते हैं। और गुलाब जो गुल हमारे साथ ही, गुलाब जो गुल, वालेकुम अस्सलाम कहते सिस्टर, असां के केड़ी खबर है, शायरी छा आहे, असां यूं लिखंदा आहियूं जेको तव्हां खे नायूं चई सघंदा। अच्छा चलो ठीक है, सुठी गाल। वैसे भी कहते हैं कि जो हम कह नहीं पाते उसको लफ्जों में बयां कर देते हैं। और मोहम्मद हनीफ हमें सुन रहे कहते हैं नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच प्यारा भा। अनवर भाई कहते हैं बस यूं था पुछूं, अदी खुश आयो न, हा अदी तव्हांजी सफ़ा खुश आहे। अनवर भा तव्हां ॿुधायो ठीकु ठाकु आहियो मज़े में। और किशोर भाई तव्हां टॉपिक जो जवाब ॾिनो आहे काला, इहो वरी चवंदो। अच्छा हिदायत अहमदानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप, असां सां भी दिल लगियूं, हेॾे भी ठगियूं होॾे भी ठगियूं मास्टर। हा हा बिल्कुल, इहो गानो हलायूं था तव्हांजे लाइ ऐं ॾाढो भलो सॉन्ग आहे, सो मिलजी करे इंजॉय कंदासीं। दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद ही, वालेकुम अस्सलाम चंदा, आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह, माई मोस्ट फेवरेट आज से। आपको भी वेलकम कहते हैं हमारी प्यारी स्वीटी दर्दी दिल। चले यहाँ पर हम बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ बातें करेंगे, आप सब लोगों को वेलकम इन खुशामदीद हो गया। यहाँ पर टाइम हुआ है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक है। सुनते रहिए और बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो आपने कहीं नहीं जाना, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं। सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए, आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्श ब्यूटी क्रीम,
3: मोरो, नौशहरो,
4: मीरपुर खास,
3: लाड़काना,
4: सक्खर,
3: गूंज रही है हर जगह पर
4: सिंध की आवाज,
3: जीए FM 88 नेटवर्क।
5: अमाजे पेंजे शहर सखर आई रोड़ी में
6: जिना अस्पताल कराची जो तरबियती आफ्ताब
5: ITB अस्पताल खैरपुर जो मशहूर
6: एलर्जी दमो TB फिफड़न आई छाती जे मुख्तलिफ बीमारियन जो माहिर
5: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुमरो
6: चेस्ट स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट
5: माहिर अमराज
6: फिफड़न में ग्यारो फिफड़न में पानी आई फिफड़न में हवा भरजन
5: TB नमूनिया आई बारन में छाती जी बीमारी
6: मोटापे जे करे निंड आई साह में तकलीफ
5: सहको दमो सिगरेट नोशी खान निजात
6: बार बार नज़लो जुकाम पुरानी खंगल
5: आई बलगम में रत अचण वगैरह
6: क्लिनिक टाइमिंग हर छंछर खां अरबा ताई शाम 4 खां 7 वगे ताई डॉक्टर शाहिद मीनानी हॉस्पिटल तीर चौक बैराज रोड सखर हेरा अस्पताल जे वेझो
5: हर खमीस आई आचर ते
6: इंडस अस्पताल घोटकी में
5: मंझंद 1 खां शाम 6 वगे ताई
6: इन खां अलावा रोजानो सुबुह जो 9 वगे खां मंझंद 1 वगे ताई
5: तालका अस्पताल रोड़ी में मरीजन जो मुफ्त मुआइनो कंदा
6: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुमरो
5: राबते जे लाइ
6: 0-3-11-3-9-87-81।
7: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1-1-1-4-7-5-2-6-4 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
8: यार मचा क्या, किथे वन्या घर

मैं तो खराब हूँ, छा तो न बुधवा, माँ तो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे माँ तो सही न हुंदो त भुख भी न लगंदी, न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी, त पोइ मां छा कयां? सोलो हल आहे इस्त

0: कुछ मुफ्त, बस खिदमत का मौका दें। याद रहे 16 सितंबर बरोज बुध सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल और बालाईसिन के मशहूर आंखों की बीमारी के माहिर डॉक्टर ओम प्रकाश मंगलानी आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। एड्रेस हिंदू पंचायत अस्पताल, म्यानी रोड सखर, राबता 0333-7125-706, 0333-7134।
1: एडमिशन्स हो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक, बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन, GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच, बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे। एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 0300-9319-6677।
2: लॉट्स ऑफ फन, लोड्स ऑफ मस्ती, ओनली ऑन GA रेडियो FM 88।
3: जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बन जाए, तो कोई तवान लाए आए एक बेहतरीन मौको सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिलाओं जारी हैं। 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 3 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, खास सहूलत स्कॉलरशिप मौजूद। बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जरे तो DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखला फीस, आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया। हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकम्मल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, आई फिजियोथेरेपी, OPD जी बेहतरीन सहूलत। ये इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा आई पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो सीट्स महदूद आहिन, तह करे पंजे रोशन मुस्तकबिल लाए अजी दाखला वठो। एक खास गाल इते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन एम बी आर सब कोर्सेस पिण थींदा आहिन। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबतो 0711-5635-642 आए 0310-8166-111। 44 सालन जो तजुर्बो, हजारे मरीजन जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 सालन जे वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहजमी, तेजाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारन जो किरण, गंजपण, फॉलेज, खारिश, बेन मुख्तलिफ़ सेहत जी तकलीफ़ुन लाए माहिराना होम्योपैथिक सलाह मुआसर इलाज फराम करे रहा आहिन। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, पुलिस लाइन सखर। टाइमिंग छंछर खां खमीस, सुबुह 10 वगे का शाम 5 वगे ताई। अपॉइंटमेंट आई वधिक मालूमात लाए हियरी राब्तो करियो 0326-22-00-440।
1: हेल्थ इज वेल्थ, जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात। GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो, होस्ट आगा जब्बार के साथ, जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर। स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 0300-9312-700।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: मोरो नौशहरों,
6: मीरपुर खास,
5: लाड़काना,
6: सखर
5: गूंज रही है हर जगह पर
6: सिंध की आवाज
5: GA FM 88 नेटवर्क।
7: उन तमाम तो लोगों लोगों को बताना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई आप सारे लोग भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपनी खोई हुई खूबसूरती को वापस ला सकते हैं, अपनी खूबसूरती को रिपेयर कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक भी कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर चुके होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर चुके होते हैं, और जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने यूज कर लिए होते हैं तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी स्किन के हिसाब से नहीं होते, हमारी स्किन टाइप के लिए नहीं होते, तो उनको इस्तेमाल करने के फौरन बाद ही जब हमारी स्किन जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है तो हमें ये लगता है कि भाई सारे प्रोडक्ट जो होते हैं मार्केट में वो ऐसे ही होते हैं। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को रिपेयर करती है। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप जानते हैं कि ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ ऐसे जनाब स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने ये फार्मूला ईजाद किया है, उन्होंने ये फार्मूला बनाया और जिसके अंदर आपके लिए विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स हैं, अल्फा आर्बुटिन है, कोहचिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई। और ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है ना, ये पाकिस्तान में 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें आप लोगों को मिलने वाले। और इसका फायदा ये होता है कि भाई जो आप लोग महंगे महंगे फेशियल्स कराते हैं ना, खास करके खवातीन, तो उनको जो फेशियल के बाद जो अच्छा सा निखार मिलता है, अच्छा सा रिजल्ट मिलता है ना, क्योंकि ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है ना, ये फेशियल्स के अंदर ऐड किए जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है जिसे आप नाइट क्रीम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपको रिजल्ट देने वाले हैं ना वो बहुत हाई लेवल के देने वाले। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसे मर्द हसरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके कोई भी अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप बेफिक्र होकर लगाइए, आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आपको रिजल्ट देने वाली है जनाब, सिर्फ और सिर्फ

पास नहीं है तो उसको आप नंबर दीजिए जो आपको प्रोग्राम में बताया जा रहा है. बोलिए भाईजान ये नंबर डायल कीजिए और अपनी दुकान पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराइए. आप जब अवेलेबल करा लेंगे ना उसके बाद हम आकर आपसे परचेज कर जाएंगे. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बहुत ज्यादा वाले फायदे जो पूरे प्रोग्राम में आपको बता दिए होंगे. पूरे प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें होंगी जनाब, क्योंकि आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक है. आप जरा हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा और मुझे बताइए कहाँ से आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं. और साथ ही साथ जो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है वो भी जरा आप लोगों से दोबारा रिपीट करते हैं. तो आज का जो मेरा आप लोगों से सवाल है वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो काले रंग का दूध देता है, यानी कि उसका जो दूध है उसके दूध के कलर का ब्लैक है. दूध का जो कलर है वो ब्लैक है. जी बिल्कुल. तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए. आप मुझे 8881 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं. तो जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर है वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कीजिए हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर रखा करें, ताकि बहुत ज्यादा वाले लोगों को हम बता सके कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में अवेलेबल है. हमारी पोस्ट पर आप लोग मौजूद हैं, आपके फीडबैक्स हैं और आप क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस की जानिब आ ही जाते हैं. अच्छा गुलाम फरीद बलोच हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं क्या हाल है जी, तबीयत ठीक है आपकी? और सारे लोग ठीक ठाक हैं और आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है जनाब, थैंक यू वेरी मच. और अनवर भाई आपने टॉपिक का जवाब तो दिया ही नहीं है, सिर्फ टॉपिक लिखा है. तो टॉपिक आई थिंक आपने अभी सुन लिया होगा, तो उसका जवाब बताएं. और मोहम्मद जमान ने तो वखरा ही जवाब दे दिया, कहते हैं टॉपिक का जवाब है भैंस. भैंस तो भाई व्हाइट दूध देते हैं ना जो हम सारे लोग पीते हैं, तो वो कहां से काला दूध देना स्टार्ट हो चुकी है. और परवा कहती है टॉपिक जादू वाली बकरी या फिर भैंस. अब ये तो पता नहीं कहाँ ही पहुंच गई है. तो वापस आ जाए मैडम साहिबा. और स्मार्टू गोपांग हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं मैं भी आ गया स्टाइलिश आरजे कंबर सिटी से आपका शो सुन रहा हूँ. वेरी नाइस वॉइस, प्लीज प्ले सॉन्ग. ओके जी, आपका गाना भी लगाते हैं. और सिकंदर हमारे साथ है, सिकायल सिकंदर अली जकरानी जिले कश्मोर खां. वालेकुम अस्सलाम, की आयो अदी भेण, प्रोग्राम जबरदस्त हले पयो. थैंक यू वेरी मच प्यारा भात अंजु मोबतवान प्रोग्राम के पसंद कर रहा हो. अनवर भा कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मां ठीक ठाक आया रब पाक अमा के सदी उम्र एड़ो ही रखे. आमीन आमीन आमीन. अच्छा फहीम भाई कहते हैं दादा काले रंग का जानवर होता है, काला दूध नहीं होता, होता है भाई होता है, तभी तो पूछा है. और किशोर भाई कहते हैं अरे बाबा हाँ हाँ सही सही, हाँ गाल समझ में आई, फिर यहाँ थोड़ी घट आई समझ में, वो हमारा कभी कभी साबुन स्लो हो जाता है. अच्छा मोहम्मद राशिद अवान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सिद्रा, हमेशा की तरह प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, खुश रहें आमीन. सलाम सब लिसनर्स को. वालेकुम अस्सलाम जी सबकी जानिब से. यासीन खंड कहते हैं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे? यहाँ पर मैं तो जरा बातों को ब्रेक लगाती हूँ, मेरे पास एक आप लोगों को सुनाने के लिए गाना है, मस्त मस्त सा गाना. तो आइए जरा इस प्यारे प्यारे से गाने को हम एंजॉय करते हैं. आजकल ये जरा अंजाम हो चुकी है चीज कि आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अप्लाई करना शुरू कीजिए. चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है.

बिल्कुल आपके मैसेजेस ही देख रही थी, आपके फीडबैक ही, क्या बात है क्या बात है, आप लोगों के मैसेजेस है। और साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो भैया आपको वेलकम कहा जाता है। बाकी जो लोगों में साइलेंट हो गए सुन रहे हैं वो भी जनाब अपने होने का एहसास दिला दिया करें। हाँ जी, खामोशियां तो लीजिए और बताइए आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं। क्या आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, ये भी बताइएगा। और मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसका दूध जो है वो काले रंग का होता है। हाँ जी,

भाई क्या बात है, गाना वाकई बहुत अच्छा है, गाना एंजॉय करेंगे। साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जी, गुड आफ्टरनून, हाय सिद्धार्थ, कैसी है? योर शो इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। अल्ताफ आपको वेलकम कहते हैं, और ये हमारे साथ कहते हैं सिद्धार्थ जी प्लीज सॉन्ग लगाइएगा, तो मुझे सनमा ही मा तुझो सनमाया। दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके डन। अच्छा ये लिखते हैं, कैसी हो सिद्धार्थ मुस्कान जी? खालिद सुमरो फ्रॉम मेहरापुर, मैं आपका प्रोग्राम रोजाना सुनता हूँ, वेरी नाइस, और आपके बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा है, और सॉन्ग सुना ममताज मोलाई का।

सीधे पहली मरतबा आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, सो बहुत शुक्रिया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेहरापुर में मिल रही है, तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिएगा। और शहर गुलाब लगारी गोट बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद है, फैजान अली रिंद, शहजाद अली रिंद बाजी आवाज में। ओके जी भाई, बहुत शुक्रिया। और क्या कहती आगे, फोजिया का गाना प्ले कीजिए। ओके आई ट्राई। और चाचा खालिद मीजो हमारे साथ कहते बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है। ओके मां चाचा तांजो गानो हला एकदम तापानी सीट ते वेही रहो। और गोट मोमन तैयब थिबू का हबीबुला थिबू हमारे साथ कहते तवा जो शो वेरी नाइस आए, सलाम तवा के। वालेकुम अस्सलाम तवा के, यो हाल अहवाल। डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोई

हार सिंगार भी कयो पर गड गड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवाजे करीबी जनरल स्टोर से अना तई अवेलेबल कोन थी आए तो वणो बाबा पुछी अचो मालूमात बैठो नथी मिले तो पोई तवाजे छाकणा जेके नंबर ताके बुधाया है उन नंबर से तवा एक दफो कॉल या वरी मैसेज करी बैठो उनन के चो अदा भाऊ असा जे गोठ में कोन थी मिलेव डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल न कराईंदा त असा इस्तेमाल किया कंदासी सुनन के चो अवेलेबल करायो आई असा इस्तेमाल कयो सोना सोना थी वणो आई असा जे खूबसूरती सफा नेक्स्ट लेवल ते हली वने सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवा सबनी मान चलाए आहे यानी कि तवा मर्द हसरात आयो खवातीन आयो हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी सके तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेंजे अंदर विटामिन ई बीट्स आहे माइक्रो बीट्स आहे के 2-in-1 फार्मूला आहे तो यूज कीजिए खूबसूरत हो जाइए और अपनी खूबसूरती को जरा पहचानिए।

ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस ही देख रही थी, आपके फीडबैक ही, क्या बात है क्या बात है, आप लोगों के मैसेजेस है। और साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो भैया आपको वेलकम कहा जाता है। बाकी जो लोगों में साइलेंट हो गए सुन रहे हैं वो भी जनाब अपने होने का एहसास दिला दिया करें। हाँ जी, खामोशियां तो लीजिए और बताइए आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, क्या आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डीस्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, ये भी बताइएगा। और मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसका दूध जो है वो काले रंग का होता है। हाँ जी,

भाई क्या बात है, गाना वाकई बहुत अच्छा है, गाना एंजॉय करेंगे। और साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जी, गुड आफ्टरनून, हाय सिद्धा, आप कैसी हैं? योर शो इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। अल्ताफ आपको वेलकम कहते हैं और ये हमारे साथ कहते हैं सिद्धा जी प्लीज सॉन्ग लगाइएगा, तो मुझो सनमा ही मा तुझो सनमा है, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके डन। अच्छा ये लिखते हैं, कैसी हो सिद्धा मुस्कान जी, खालिद सुमरो फ्रॉम मेहरापुर, मैं आपका प्रोग्राम रोजाना सुनता हूँ, वेरी नाइस, और आपके बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा है, और सॉन्ग सुना ममताज मोलाई का।

आपको वेलकम कहते पहली मरतबा आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, सो बहुत शुक्रिया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेहरापुर में मिल रही है, तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिएगा। और शहर गुलाब लगारी गोट बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद है, फैजान अली रिंद, शहजाद अली रिंद बाजी आवाज में। ओके जी भाई, बहुत शुक्रिया। और क्या कहते हैं आगे, फोजिया का गाना प्ले कीजिए। ओके आई ट्राई। और चाचा खालिद जुनी जो हमारे साथ कहते बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है। ओके मां चाचा तांजो गानो हला एकदम तापानी सीट ते वेही रहो। और गो टू मोमन तैयब थिबू का हबीबुल्ला थिबू हमारे साथ कहते तवां जो शो वेरी नाइस आई, सलाम तवां के। आई वालेकुम अस्सलाम तवां के। यो हलवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोन है।

कर भी कयो पर गड गड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से अञा ताईं अवेलेबल कोन थी आहे त वञो बाबा पुछी अचो मालूमात वठो नथी मिले त पोइ तव्हांखे छा करणा जेके नंबर तव्हांखे ॿुधाया आहिनि उन नंबर से तव्हां हिकु दफ़ो कॉल या वरी मैसेज करे वठो उन्हनि खे चओ अदा भाऊ असांजे ॻोठ में कोन थो मिलेव डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल न कराईंदा त असां इस्तेमाल कीअं कंदासीं सो उन्हनि खे चओ अवेलेबल करायो ऐं असां इस्तेमाल कयूं सोणा सोणा थी वञो ऐं असांजी ख़ूबसूरती सफ़ा नेक्स्ट लेवल ते हली वञे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां सभिनी माण्हुनि जे लाइ आहे यानी कि तव्हां मर्द हज़रात आहियो ख़वातीन आहियो हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघे थो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जंहिंजे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि माइक्रो बीट्स आहिनि ही 2-in-1 फार्मूलो आहे सो यूज़ कीजिए खूबसूरत हो जाइए और अपनी खूबसूरती को जरा पहचानिए

0: ऑपरेशन मुफ्त ऐनकें, सब कुछ मुफ्त, बस खिदमत का मौका दें। याद रहे 16 सितंबर बरोज बुध सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल और बालाईसिन के मशहूर आंखों की बीमारी के माहिर डॉक्टर ओम प्रकाश मंगलानी आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। एड्रेस हिंदू पंचायत अस्पताल, म्यानी रोड, सखर, राबता 0333-7125-706, 0333-7134।
1: एडमिशन्स हो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक, बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन, GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच, बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे। एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 0300-9319-6677।
2: लॉट्स ऑफ फन, लोड्स ऑफ मस्ती, ओनली ऑन जी रेडियो एफएम 88।
3: तवा जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन, तो तवा लाए आए एक बेहतरीन मौको। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिलाओं जारी आहिन। 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, खास सहूलतों, स्कॉलरशिप्स मौजूद। बिन सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जरे ते DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखला फीस, आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया। हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकम्मल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, आई फिजियोथेरेपी, OPD जी बेहतरीन सहूलत। ये इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा, आई पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो सीट्स महदूद आहिन, तह करे पंजे रोशन मुस्तकबिल लाए अजी दाखला वठो। आई एक खास गाल, इते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन, आई बिया सब कोर्सेस पिण थींदा आहिन। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबतो 0711-5635-642, आई 0310-8166-111। 44 सालन जो तजुर्बो, हजारे मरीजन जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 सालन जे वसी तजुर्बे सा हर किस्म जा आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहजमी, तेजाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारन जो किरण, गंजपण, फॉलेज, खारिश, ऐं बियन मुख्तलिफ़ सेहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसर इलाज फराम करे रहा आहिनि। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर, पुलिस हेडक्वार्टर चौक, पुलिस लाइन, सखर। टाइमिंग छंछर खां खमीस, सुबुह 10 वगे खां शाम 5 वगे ताई। अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 0326-22-00-440।
1: हेल्थ इज वेल्थ, जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात। GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो, होस्ट आगा जब्बार के साथ, जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुँचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर। स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 0300-9312-700।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: मोरो
6: नौ शहरों,
5: मीरपुर खास,
6: लाड़काना,
5: सखर,
6: गूंज रही है हर जगह पर
5: सिंध की आवाज
6: GFM 88 नेटवर्क।
7: उन तमाम लोगों लोगों को बताना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई आप सारे लोग भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपनी खोई हुई खूबसूरती को वापस ला सकते हैं, अपनी खूबसूरती को रिपेयर कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक भी कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर चुके होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर चुके होते हैं, और जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने यूज कर लिए होते हैं तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी स्किन के हिसाब से नहीं होते, हमारी स्किन टाइप के लिए नहीं होते, तो उनको इस्तेमाल करने के फौरन बाद ही जब हमारी स्किन जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है तो हमें ये लगता है कि भाई सारे प्रोडक्ट जो होते हैं मार्केट में वो ऐसे ही होते हैं। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को रिपेयर करती है। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप जानते हैं कि ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ ऐसे जनाब स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने ये फार्मूला ईजाद किया है, उन्होंने ये फार्मूला बनाया है, और जिसके अंदर आपके लिए विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स हैं, अल्फा आर्बुटिन है, कोहचिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई। और ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है ना, ये पाकिस्तान में 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें आप लोगों को मिलने वाले। और इसका फायदा ये होता है कि भाई जो आप लोग महंगे महंगे फेशियल्स कराते हैं ना, खास करके खवातीन, तो उनको जो फेशियल के बाद जो अच्छा सा निखार मिलता है, अच्छा सा रिजल्ट मिलता है ना, क्योंकि ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है ना, ये फेशियल्स के अंदर ऐड किए जाते हैं। तो डी स्किन

खातून का फोटो है, तो ये देखना जरा आप पहचान लीजिएगा कि हाँ जी हम बिल्कुल सही प्रोडक्ट परचेज करें। क्योंकि कई मरतबा हम जब दुकानदार की जानिब जाते हैं उसे मालूम करते हैं कि भाई फलां प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है, तो वो आगे से यही कहता है, अगर उसके पास नहीं होता तो वो कोई भी दूसरा सा प्रोडक्ट थमा देता है, कहता है ये उससे ज्यादा अच्छा है, ले जाइए। इन चीजों में आप इन बातों में मत आइएगा। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाम लेकर तलब कीजिएगा, उसके पास नहीं है तो उसको आप नंबर दीजिए जो आपको प्रोग्राम में बताया जा रहा है, बोलिए भाईजान ये नंबर डायल कीजिए और अपनी दुकान पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराइए। आप जब अवेलेबल करा लेंगे ना उसके बाद हम आकर आपसे परचेज कर जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बहुत ज्यादा वाले फायदे जो पूरे प्रोग्राम में आपको बताते आऊंगे, पूरे प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें होंगी जनाब, क्योंकि आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक है। आप जरा हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा और मुझे बताइए कहाँ से आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है वो भी जरा आप लोगों से दोबारा रिपीट करते हैं। तो आज का जो मेरा आप लोगों से सवाल है वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जो काले रंग का दूध देता है, यानी कि उसका जो दूध है उसके दूध के कलर का ब्लैक है, दूध का जो कलर है वो ब्लैक है। जी बिल्कुल, तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, आप मुझे 8881 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर है वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कीजिए हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर रखा करें, ताकि बहुत ज्यादा वाले लोगों को हम बता सके कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में अवेलेबल है। हमारी पोस्ट पर आप लोग मौजूद हैं, आपके फीडबैक्स हैं और आप क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस की जानिब आ ही जाते हैं। अच्छा गुलाम फरीद बलोच हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं क्या हाल है जी, तबीयत ठीक है आपकी और सारे लोग ठीक ठाक हैं और आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है जनाब, थैंक यू वेरी मच। और अनवर भाई आपने टॉपिक का जवाब तो दिया ही नहीं है, सिर्फ टॉपिक लिखा है, तो टॉपिक आई थिंक आपने अभी सुन लिया होगा, तो उसका जवाब बताएं। और मोहम्मद जमान ने तो वखरा ही जवाब दे दिया, कहते टॉपिक का जवाब है भैंस, भैंस तो भाई व्हाइट दूध देते हैं ना जो हम सारे लोग पीते हैं, तो वो कहां से काला दूध देना स्टार्ट हो चुकी है। और परवा कहती है टॉपिक जादू वाली बकरी या फिर भैंस, अब ये तो पता नहीं कहाँ ही पहुंच गई है। वापस आ जाए मैडम साहिबा। और स्मार्टू गोपांग हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मैं भी आ गया, स्टाइलिश आरजे कंबर सिटी से आपका शो सुन रहा हूँ, वेरी नाइस वॉइस, प्लीज प्ले सॉन्ग। ओके जी आपका गाना भी लगाते हैं। और सिकंदर हमारे साथ है, सिकायल सिकंदर अली जकरानी जिले कश्मोर खा, वालेकुम अस्सलाम की आयो अदी भेण, प्रोग्राम जबरदस्त हले पयो, थैंक यू वेरी मच प्यारा भात अंजु प्रोग्राम के पसंद कर आयो। अनवर भा कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मां ठीक ठाक आया रब पाक अमां के, रब पाक अमां के सनी उम्र एड़ो ही रखे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा फहीम भाई कहते हैं दादा काले रंग का जानवर होता है, काला दूध नहीं होता, होता है भाई होता है, तभी तो पूछा है। और किशोर भाई कहते हैं अरे बाबा हाँ हाँ सही सही, हाँ गाल समझ में आई, फिर यहाँ थोड़ी घट आई समझ में, वो हमारा कभी कभी साबुन स्लो हो जाता है। अच्छा मोहम्मद राशिद अवान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सिद्रा, हमेशा की तरह प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, खुश रहें आमीन, सलाम सब लिसनर्स को, वालेकुम अस्सलाम जी सबकी जानिब से। यासीन खंड कहते हैं आप कैसी हैं, मैं ठीक हूँ जी आप बताएं कैसे, यहाँ पर मैं तो जरा बातों को ब्रेक लगाती हूँ, मेरे पास एक आप लोगों को सुनाने के लिए गाना है, मस्त मस्त सा गाना, तो आइए जरा इस प्यारे प्यारे से गाने को हम एंजॉय करते हैं। आजकल ये जरा अंजाम हो चुकी है चीज कि आप लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अप्लाई करना शुरू कीजिए, चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।

ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस ही देख रही थी, आपके फीडबैक्स ही, क्या बात है क्या बात है, आप लोगों के मैसेजेस है। और साथ साथ यहाँ पर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो भैया आपको वेलकम कहा जाता है। बाकी जो लोगों में साइलेंट हो गए सुन रहे हैं वो भी जनाब अपने होने का एहसास दिला दिया करें। हाँ जी, खामोशियां तो लीजिए और बताइए आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, क्या आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है ये भी बताइएगा। और मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसका दूध जो है वो काले रंग का होता है। हाँ जी,

भाई क्या बात है, गाना वाकई बहुत अच्छा है, गाना एंजॉय करेंगे। और साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जी, गुड आफ्टरनून, हाय सिद्रा, आप कैसी हैं? योर शो इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। अल्ताफ आपको वेलकम कहते हैं और ये हमारे साथ कहते हैं सिद्रा जी प्लीज सॉन्ग लगाइएगा, तू मुझो सनमा ही मा तुझो सनमा है, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके डन। अच्छा ये लिखते हैं, कैसी हो सिद्रा मुस्कान जी? खालिद सुमरो फ्रॉम मेहरापुर, मैं आपका प्रोग्राम रोजाना सुनता हूँ, वेरी नाइस, और आपके बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा है, और सॉन्ग सुना ममताज मलाइका।

सो मच, आपको वेलकम कहते पहली मरतबा आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, सो बहुत शुक्रिया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेहरापुर में मिल रही है, तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिएगा। और शहर गुलाब लगारी गोट बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद है, फैजान अली रिंद, शहजाद अली रिंद बाजी आवाज में। ओके जी भाई, बहुत शुक्रिया। और क्या कहते हैं आगे, फोजिया का गाना प्ले कीजिए। ओके आई ट्राई। और चाचा खाले जुड़ी जो हमारे साथ कहते बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है। ओके माँ चाचा तांजो गानो हलाइंदम तापानी सीट ते वेही रहो। और गो टू ममन तैयब थिबू का हबीबुल्ला थिबू हमारे साथ कहते तवा जो शो वेरी नाइस आए। सलाम तवा के, वालेकुम अस्सलाम तवा के, जो हाल अहवाल। डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कौन है?

ड्रेसिंग घर भी कयो पर गड गड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से अञा ताईं अवेलेबल कोन थी आहे त वञो बाबा पुछी अचो मालूमात वठो नथी मिले त पोइ तव्हांखे छा करणा जेके नंबर तव्हांखे ॿुधाया आहिनि उन नंबर ते तव्हां हिकु दफ़ो कॉल या वरी मैसेज करे वठो उन्हनि खे चओ अदा भाउ असांजे ॻोठ में कोन थी मिलेव डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल न कराईंदा त असां इस्तेमाल कीअं कंदासीं सो उन्हनि खे चओ अवेलेबल करायो ऐं असां इस्तेमाल कयूं सोणा सोणा थी वञो ऐं असांजी ख़ूबसूरती सफ़ा नेक्स्ट लेवल ते हली वञे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां सभिनी माण्हुनि जे लाइ आहे यानी कि तव्हां मर्द हज़रात आहियो ख़वातीन आहियो हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघे थो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जंहिंजे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि माइक्रो बीट्स आहिनि ही 2-in-1 फार्मूलो आहे सो यूज़ कीजिए खूबसूरत हो जाइए और अपनी खूबसूरती को जरा पहचानिए

0: अच्छा जी, गाना तो सुनेंगे, साथ साथ आप क्या कह रही, थोड़े से मैसेजेस भी पढ़ लेते क्योंकि यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा हो जाते तो फिर मसला हो जाता है। दर्द दिल कहती है कि कुछ दिन छोड़ नहीं सुना, कुछ मसरूफियात थी मगर चंदा भूली नहीं, तेरा नाम लिया तुझे याद किया जब शो का टाइम होता था तो मिस यू। ओके जाना, बहुत शुक्रिया, वैसे हमने भी आपको बहुत मिस किया। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि जिंदगी चैन से गुजर जाए अगर वो शख्स जहन से उतर जाए। आए हाय हाय। डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए। आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्श ब्यूटी क्रीम।
2: मोरू,
3: नौशहरों,
2: मीरपुर खास,
3: लाड़काना,
2: सक्खर
3: गूंज रही है हर जगह पर
2: सिंध की आवाज।
3: जीए FM 88 नेटवर्क।
4: अमाजे पेंजे शहर सखर आई रोड़ी में
5: जिना अस्पताल कराची जो तरबियती आफ्ताब
4: ITB अस्पताल खैरपुर जो मशहूर
5: एलर्जी दमो टीबी फिफड़न आई छाती जे मुख्तलिफ बीमारियन जो माहिर
4: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुमरो
5: चेस्ट स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट
4: माहिर अमराज
5: फिफड़न में ग्यारो फिफड़न में पानी आई फिफड़न में हवा भरजन
4: टीबी नमूनिया आई बारन में छाती जी बीमारी
5: मोटापे जे करे निंड आई साह में तकलीफ
4: सहको दमो सिगरेट नोशी खान निजात
5: बार बार नज़लो जुकाम पुरानी
4: बलगम में रत अचण वगैरह
5: क्लिनिक टाइमिंग्स हर छंछर का अरबा ताई शाम 4 से 7 ताई डॉक्टर शाहिद मीरानी हॉस्पिटल तीर चौक बैराज रोड सखर हेरा अस्पताल जे वेझो
4: हर खमीस आचर ते
5: इंडस अस्पताल घोटकी में
4: मंझंद 1 से 6 ताई
5: इन खां अलावा रोजाना सुबह जो 9 खां मंझंद 1 ताई
4: तालका अस्पताल रोड़ी में मरीजन जो मुफ्त मुआइनो कंदा
5: डॉक्टर मोहम्मद नासिर सुमरो
4: राबते जे लाए
5: 0-3-11-3-9-87-81।
6: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1-1-1-4-7-5-2-6-4 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
7: यार मचा क्या, किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई ना ही थी।
8: जो भला साथ हुआ तुखे, साफ साफ बुधा मसलो छाए।
7: यार हिक मसलो हुजे तब बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगला है, न भूख सही लगे थी, आई जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पैर सुन थी वनन था, आई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही नाया।
8: यार तुझा घणा न, बस हिक ही मसलो आ।
7: हिक इहो किए?
8: हां तुझो मैदो खराब आ, छा तो न बुधवा, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न होंदो त भूख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो, आई न ताकत मिलंदी।
7: तो पो मां छा कया?
8: सोलो हलाहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, हे कुदरती जुजन मां तैयार कैल कोर्स, तुझे जिस्म जो हिस्सो बणजी, तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत करे छरींदो, भूख खुली वेंदई, खादो सुठे नमूने हजम थींदई, पेट भूख जण खत्म, सुस्ती खत्म, जिस्म में ताकत ईंदई।
7: वाह यार वाह जी, गाल बुधाई थी, पर ये किथे मिलंदो?
8: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी, आई राबते जे लाए नंबर भी अथई 0305-58-00-616। शिफाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
9: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।
10: इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
11: कंट्रोल फ्रेम 210-210 मूव करेंगे।
9: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। ایمرجنسی ریسکیو 1122. آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری.

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: आप सुन रहे हैं
1: जी ए एफ एम 88
0: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: had discussions. The Houthis called us, and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us, and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And they're letting most ships go through. There's just one country that they're not too happy with, and we'll get that straightened out.
1: हुसैन फोन ते ॿुधायो आहे त अमेरिका सां जंग नथा चाहिनि, जहाज़नि खे बि गुज़रण ॾेई रहिया आहिनि, रुगो हिकु मुल्क खे रोके रहिया आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब जे तेल वारनि पाइपलाइन्स ते हमले जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾींदे चयो आहे त ईरान सां जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो। सऊदी वली अहद मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे, सभु कुझु ठीकु थी वेंदो। सऊदी अरब जे पाइपलाइन ते हमले जो ज़िमेवार ईरान आहे, आबना अरब से कंट्रोल अमेरिका जो आहे। अमेरिका जारियत बंदि करे त आबन अरब खुली वेंदो। ओमान में अरब मुल्कनि सां सूमर ते थींदड़ इजलास में ओमान ऐं ईरान विच में मुआदे ते सयूं थींदियूं। ईरानी सदर मसूद पिज़िक्शान चयो आहे त अरब मुल्कनि जे सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि। अमेरिका खे पाबंदियूं ऐं नाकाबंदी ख़तमु करणु घुर्जे। इस्माइल बकाई चयो आहे त आबन अरब जो कंट्रोल ईरान वटि आहे। तेल क़ीमतुनि में वाद जो ज़िमेवार बि अमरीका आहे। सऊदी अरब, उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ु ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ीअ चयो आहे त मुतालबनि जी मञता ताईं अमरीका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। यमन जे हुसैन बाबुल मंदब जो कंट्रोल संभालण बैदि आलमी आबी रस्ते में गश्त शुरू करे छॾियो। बाबुल मंदब जे आम बेट मेवन ते बि कब्ज़े जी दावा। यमनी फ़ौज चयो आहे त मुखा ऐं बाबुल मंदब में हुसैन जे थाकनि ते बमबारी कई आहे, जंहिं दौरान हुसैन जो वॾो नुक़सान थियो आहे। पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़ामत, हमला खिते जे अमन ऐं इस्तेहकाम लाइ ख़तरो करार। सऊदीअ सां गॾु बीहण वारे अज़म जो वर्जा परॾेही तर्जुमान चयो आहे त सऊदी अरब जे तेल लाइन ते ड्रोन हमलनि सबबि शहरी बि ज़ख़्मी थिया आहिनि। हमला आलमी कानून जी भञकड़ी आहिनि। हमले सां खिते जो अमन ऐं इस्तेहकाम मुतासिर थी सघे थो। मुल्क में नवनि सूबनि बाबति बहस हली रहियो आहे। नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो पार्लियामेंट खे करणो आहे। नवनि सूबनि जे हवाले सां आवाम खां बि राय वरिती वेंदी। पीपल्स पार्टी सूबनि जे मामले ते ज़रूरत खां वधीक रद अमल ॾिनो। सूबनि जो मामिलो पार्लियामेंट में ईंदो त नून लीग पॉलिसी बयान ॾींदी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाला चयो त वफ़ाकी घरू वज़ीरनि सूबनि वारे मामलनि ते काबीना तोड़ी पार्लियामेंट में न आहे ॻाल्हायो। वापारियुनि जे सेमिनार में थियल ॻाल्हि अहमियत जोगी न आहे।
2: कंदो रात मुंहिंजी घरवारीअ जी डिलेवरी यकीन कंदो। मां गाॾीअ वारे ॾे वियुमि, मां हुनखे चयो डिलेवरी मसलो हलूं खैरपुर, चई पेट्रोल महांगो थी वियो आहे, 3,000 रुपया किरायो वठंदोमांइ खैरपुर ताईं। आख़िर तड़पी तड़पी जेको हुनजो ॿार हो थी, अहिड़ो असां सां ना कई हशर।
3: माण्हुनि जो जीअं जंजाल थी वियो आहे, गाॾी कढण जहिड़ा कोन माण्हू परेशान लॻा पिया।
4: महांगाई जो जेको भूत आहे, बोतल मां निकिरी आयो आहे, ग़रीब माण्हू केॾांहुं वञनि
5: था? अचण वसण जा भुख ते मरनि था। 500 कमायूं था, 500 पूरा ई न आहे। ते हुकुम था वोट ॾेई असां ग़रीब फासी विया आहियूं।
6: दाल चढ़े थी, सब्जी ॾिसो चढ़े थी, गिहु चढ़े थो, अटो ॾिसो 30-20 रुपया, 140 रुपया थी वियो। केरु ग़रीब माण्हू कालो वठंदा?
1: पेट्रोल जे अघनि में ॻाटे ट्रोड़ बाद शहरनि जी सप ख़तम करे छॾी। मुसाफ़िर गाॾियुनि जे भाड़नि में ॻाटे ट्रोड़ बाद खाद खुराक वारियूं शयूं बि महांगी थी वियूं। खाद खुराक वारनि शयुनि जा अघ बि वधी विया। शहरी सख़्तु परेशान। सखर में शहरी इतिहाद जो एहतजाज, अलामती जनाज़ो बि कढियो वियो। पेट्रोल महांगो थियण सबबि अटो 30 सैकड़ो खीर 8 सैकड़ो मिर्च 16 सैकड़ो बसर 150 सैकड़ो गोश्त 15 सैकड़ो डबल रोटी 8 सैकड़ो महांगी थी वही शुमारियात खाते महंगाई वधण जी तस्दीक कंदे चयो आहे त बिजली 25 सैकड़ो एलपीजी 55 सैकड़ो महांगी थी वही आहे पटाटा मुर्गी बेज़ा ऐं खंड सस्ती थी आहे
7: नमाज पढ़ने गया पीछे से बच्ची गुम हो गई
8: जी जी
7: जब सलाम फेर के देखा तो पीछे थी नहीं तो खिलास होके पीछे मिली कौन क्या करेगा कोई कुछ भी नहीं करेगा मैं गरीब हूँ ना ऐसी मर जाऊंगा धक्का दो मेरे को इंसाफ तो मिलेगा नहीं ना धक्का दो तुम्हारी भी जन्नत बनेगी
8: इंसाफ पैसा के जो मुजरिमान की सजा मिले आज असा
1: टंडरो आहे त मां गुज़िरियल ॾींहुं गुम थियल ॿार ॾींहं खे जिंसी ॾाढाई बाद क़तल करण जो इनकशाफ़ नींगरीअ जो लाश हथ जवाबदार गिरफ़्तार ॾोह जो एतिराब पुलिस मूजिबि अंजम मलवासी पंजनि वरियनि जी दुआ अंसारीअ जो पुराणे तबलीगी मर्कज़ वटां लाश मिलियो वाकियो शकी हुजण ते पोस्टमार्टम करायो त ॿार ॾींहं सां ज़्यादतीअ जी तसदीक थी जवाबदार कासिम कुंडाणीअ गिरफ़्तार कयो आहे जंहिं ॾोह जो एतिराब कयो आहे वकीलनि जो नींगरीअ जे क़तल वारे वाके ख़िलाफ़ एहतजाज तालका इस्पताल खे सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो इंसाफ़ जी वक़्तु सिर फरहमी ज़रूरी आहे ज़िली अदालतुनि ऐं हाई कोर्ट्स में राब्तनि खे बि बहितर बणाइणो सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस यया आफरीदीअ चयो आहे त ज़िली अदालतूं इंसाफ़ वारे निज़ाम में करंगीअ जी हॾी वारी हैसियत रखनि थियूं नौजवाननि जजिस बहितरीन अंदाज़ में इंसाफ़ जी फरहमी यकीनी बणाइनि उणिवीह सौ पंजहठि वारी जंग जे हीरो शहीद मेजर अज़ीज़ भट्टीअ जी एकाठी वर्सी सदर आसिफ़ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं ॿियनि पारां भेटा पेश सदर आसिफ़ ज़रदारीअ चयो त शहीद मेजर अज़ीज़ भट्टीअ जी क़ुर्बानी वतन जी मिटी ऐं तक़दस लाइ रोशन मिसाल आहे हाई कोर्ट सखर बेंच जे हुकुम ते आईजी सिंध जे फहमीदा पिताफ़ी केस जे जांच लाइ घोटकी अहमद जावेद आलम ओढो एसएसपी ऑफिस में डीआईजी सखर नासिर आफ़्ताब पठाण एसएसपी सां गॾिजाणी करे ब्रीफिंग वरिती आईजी सिंध जो दौरो मीडिया खां गुज़ो रखियो वियो ज़रियनि मूजिबि आईजी फहमीदा केस बाबति तफ़सील बि वरिता आमिर ज़िया जे दौर में जमहूरियत जे बहाली वारे तहरीक दौरान शहादतूं माणींदड़नि जी अॼु 43 वर्सी मल्हाई पई वञे वारसनि ऐं पी पी अॻवाणनि जी खैरपुर नाथन शाह में 12 सेप्टेम्बर जे शहीदनि जे मज़ारनि ते हाज़िरी शहीदनि खे भेटा पेश नओं देरो में शहीदनि लाइ क़ुरान ख़ानी कई वई टंडरो मस्ती भरिसां पढ़ियल नारी ऐं नौजवान पारां पसंदि पढ़ण लाइ निकिरण खां पोइ नारीअ जे वारसनि नौजवान जे घरनि खे बाहि ॾेई छॾी जवाबदारनि अमजद फुलपोटो जे घर ऐं दुकान खे बायूं ॾेई छॾियूं इलाइक़े वासनि मूजिबि अमजद फुलपोटो घरवारीअ जे भाटीअ जी ज़ाल सां निकिरी वियो आहे नारीअ जे वारसनि इल्ज़ाम मड़ियो त अमजद फुलपोटो नारी खे अॻवा कयो आहे सखर में सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ पीपुल्स लायर फोरम जी रैली वकीरनि हाई कोर्ट बार खां रैली कढी शहर जो गश्त कयो अॻवाणनि चयो त सिंध खे टोड़ण मुल्क खे कमज़ोर करण जे बराबरि आहे 1947 खां मुल्क में 4 सूबा आहिनि वधीक सूबनि वारो राग बंदि कयो वञे नओं देरो भरिसां फसल खे ज़हरीली दवा जो फुहारो कंदे हिकु हारी फोत 3 ॼणा बेहोश बुम्बटपुर में सारियाले फसल खे फुहारो करण दौरान हारी हिदायत लाइ लाशारी फोत थियो बेहोश थियल हारियुनि जो राबेल खखरानी निसार अहमद अज़ीज़ लाइ शामिल आहिनि जिन खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे घोटकीअ में ॻोठाणे ते तशदुद वारे केस में अॻूणे एसएचओ क़ाबिल भयो ॿिनि ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले अदालत पारां क़ाबिल भयो अहलकार निसार महर जो रिमांड मंज़ूर कयो अहलकार निसार महर खे बि पुलिस हथ खणी हणी रिमांड लाइ अदालत में पेश कयो वियो

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला जी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस. राणा सनावला चयो त नवनि सूबनि बाबति बहस पार्लियामेंट में थियणु घुरिजे, सेमिनारनि में न. पार्लियामेंट में बहस थींदो त नून लीग हिसो बि वठंदी, पार्टी स्टेटमेंट ॾींदी. नून लीग सियासी जमायत आहे, सेमिनारनि जे बुनियाद ते पंहिंजो मौक़ ॿुधाइण जी पाबंद न आहे. असांजी नज़र में पीपुल्स पार्टी घणो रदअमल ॾिनो आहे. मामले खे सिंधी असेंबली में खणी अचणु सियासी क़दम हो ऐं उनजो सियासी तौरु फ़ाइदो पहुतो आहे. मोहसिन नक़वी रेफरेंडम बाबति वफ़ाक़ी काबीना ऐं पार्लियामेंट में का ॻाल्हि न कई आहे. ॿिनि हफ़्तनि ताईं क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जा इजलास थिया आहिनि, पर कंहिं बि वज़ीर अहिड़ी ॻाल्हि न कई. 10 ॾींहं अॻु वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थियो, पर कंहिं वज़ीर ॻाल्हि न कई. अञा त वफ़ाक़ी काबीना में ई बहस न थियो आहे. थींदो त वज़ीर आज़म मुनासिब फ़ैसिलो कंदो. सिंध विरहाङो केर बि नथो करे सघे. सिंध जा फ्लुट कयल वसीला वापसि वठी ॾेखारींदासीं. सूबनि जूं मिल्कियतूं फबाइण ऐं सूबाई इस वसीलनि ते कंट्रोल जूं रिथाऊं तयारु कयूं वियूं आहिनि. सिंधी डेल्टा खे हथु वठी तबाह कयो वियो आहे. डेल्टा जी तबाही सबबि हज़ारे खानदान लॾ पलाण करे रहिया आहिनि. SUP जे सरबराह ज़ैन शाह जो सिटी कोर्ट में सेमिनार खे ख़िताब. नाले वारी माशी माहिर कैसर बंगाली चयो त सिंध जा बासर माण्हू सिंध जे मुफ़ादनि जे समझौतो करे वेंदा आहिनि. उहो ख़तरो अॼु बि मौजूदु आहे. सूबनि खे इस्लामाबाद सां मुआदनि ते होशियारु रहणु घुरिजे. सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं अॻु बि थींदियूं रहियूं आहिनि. सिंध खे हाञो रसाइण में सिंध जा पंहिंजा माण्हू मुलोस रहिया आहिनि. वञुनि लाइ सिंध असेंबली हिमायत में वोट ॾिनो. हिकु सदी जी तारीख़ में सिंध ते 4 हमला थिया. चइनि हमलनि में सिंध जूं शख़्सियतूं मुलोस रहियूं. बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज़ भुट्टी चयो आहे त कोयटा में वेही सॼे बलोचिस्तान खे कंट्रोल करणु मुमकिन आहे. बलोचिस्तान में नवां सूबा इंतिज़ामी बुनियादनि ते ठहणु घुरिजनि. बलोचिस्तान में अढाई सालनि जी कंहिं हुकूमती मुआदे जी ॼाण नाहे. जेसी ताईं उहिदे ते आहियां, आवाम जी ख़िदमत जारी रखंदुसि. बलोचिस्तान मां 11 लख मुहाजरनि खे वापसि अफ़गानिस्तान उमाणियो वियो आहे. बलोचिस्तान में आख़िरी दहशतगर्द जे ख़ात्मे ताईं जंग जारी रहंदी.

इतलाइन त पीटीआई जी लॉन्ग मार्च में हथियारबंद ईंदा अहिड़ा बि माण्हू हूंदा जेके बलूचिस्तान ऐं केपी में दहशतगर्दी जी कार्रवाई में मुलवस आहिनि। अहिड़े जथे खे रोकण लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो फर्ज़ आहे। राणा सनाला जी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस राणा सनाला चयो आहे त पीटीआई जे लॉन्ग मार्च मां तवकन आहे त पुरमन हूंदो। पीटीआई जो तर्जुमान चवे थो त इस्लामाबाद वञी हुकूमत कराईंदासीं, इहे माण्हू लाज़मी दहशत पकड़ींदा। मामिलो अदालत में ॿुधणी हेठि आहे। अदालती फ़ैसिले ऐं क़ानूनी घुर्जुनि तहत लॉन्ग मार्च खे डील कयो वेंदो। ईरान जंग जल्द ख़त्म थी वेंदी। जंग ख़त्म थियण बाद पेट्रोलियम शयुनि जूं क़ीमतूं घटिजी वेंदियूं। सऊदी वलीअत सुठो दोस्त आहे। समूरा मामला ठीकु थी वेंदा। डबलन में सदर ट्रंप जूं आयरलैंड वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं। सदर ट्रंप चयो त हुसी अमरीका ख़िलाफ़ु जंग में शामिलु नथा थियणु चाहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में सऊदी जे तेल वारी पाइपलाइन ते हमले में ईरान मुलवस आहे।

इराक खां सऊदी ते ड्रोन हमलो, केतिरा ई माण्हू ज़ख़्मी थियण जा इतला। सऊदी रियाज़ ऐं मदीना रीजन में अहम तेल जी पाइपलाइन आर्ज़ी तौरु बंदि करे छॾी। 1200 किलोमीटर डिघी पाइपलाइन ज़रिए रोज़ानो 40 खां 50 लख बैरल तेल मुंतक़िल कयो वेंदो हो। सऊदी परॾेही वज़ीर जो चवणो त इराक मां उन इलाइक़े खां हमिलो कयो वियो जिते ईरान नवाज़ हथियारबंदि ग्रुप सरगर्म आहे। इराकी वज़ीर आज़म जी दरख़्वास्त ते फ़िलहालु जवाबी कार्रवाई न करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। इराकी वज़ीर आज़म आला फ़ौजी कमांडर खे बरतरफ़ करे छॾियो। इराक ईरान सां मिलंदड़ चलमचा बार्डर क्रॉसिंग बि बंदि करे छॾी। क़तर, मिस्र ऐं बेरेन पारां सऊदी तेल पाइपलाइन ते हमले जी मज़म्मत। पाकिस्तान जी सऊदी अरब जे तेल वारी पाइपलाइन ते हमले जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त रियाज़ ऐं मदीना जे इलाइक़नि में पाइपलाइन खे ड्रोन हमलनि सां नुक़सानु पहुचायो। शहरी ज़ख़्मी थिया आहिनि ऐं सऊदी अरब में शहरी ठिकाणनि खे निशानो बणाइण आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। ड्रोन हमला सऊदी अरब जे ख़ुदमुख़्तियारी ऐं इलाइक़े सलामती जी बि खुलियल भञकड़ी आहिनि। ड्रोन हमला ख़िते जे अमुन, सलामती ऐं इस्तेहकाम जे लाइ संगीन ख़तरो आहिनि। पाकिस्तान सऊदी अरब जी ख़ुदमुख़्तियारी, इलाइक़ाई सलामती ऐं खुशहाली जी भरपूर हिमायत करे थो। सऊदी अरब, उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ु ठहराउ जी हिमायत जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त असां जंग जी हालति में आहियूं। सामूंडी पाबंदियूं ऐं नाकाबंदी जंग जे बराबरि आहे। अहिड़ी सूरत में असां कुझु बि कयूं त उनखे दिफ़ा सॾियो वेंदो आहे। हरमोज़लंग हाणे बि ईरान जे कंट्रोल में आहे। दुनिया खे तेल जी वधंदड़ क़ीमतुनि जो ज़िमेवारु अमरीका खे क़रार ॾियणु घुरिजे।

0: यमन जे उसी बागिन जो वड़ो एक्शन आम सामुंडी लंग बाबेल मंथम जे बेट हेवन ते कब्जो करे वरतो। हुसैन जी तंजीम अंसार ला यूरोप ए एशिया के मिलाईंदड़ आम सामुंडी तजारती लंग बाबेल मंथम जी निगरानी शुरू करे छी। हुसी बागिन गाढ़े समुंड जी साली शहर जबाब ए अलमखा शहर में गडल कौमन जे इमदादी मरकज जो कंट्रोल संभाले वरतो। हुसी बागिन जे बाबेल मंथम जो कंट्रोल संभालण जी सूरत में आलमी तजारत के कापारी धक लगण जो खर्चो। यमनी हुकूमत जे हथियारबंद फौज जे तर्जुमान चयो आहे त अलमखा ए जबाब शहरन में हुसैन जी तंजीम अंसारुल्लाह जे ठिकाणनि ते हमला कया पिया वञनि। वॾे अंग में हुसी वेढ़ाक मारिया विया आहिनि। गाॾियूं ऐं हथियार तबाह करण जी बिदावा। हुसी फ़ौजी तर्जुमान जो चवणु आहे त सऊदी अरब खां सवाइ सभिनी लाइ बाबेल मंदब खुलियल आहे। गॾियल क़ौमुनि पारां यमन जे शहर अलमखा में आलमी इदारे जी इमदादी मर्कज़ ते हुसी बागिन जे कब्ज़े ते गणती जो ज़ार। तर्जुमान फरहान हक़ चयो आहे त हुसी बागिन अलमखा में इमदादी मर्कज़ जो कंट्रोल संभाले वरितो आहे। गॾियल क़ौमुनि जा अहलकार अॻु ई इलाइक़ो छॾी विया। सेप्टेंबर जी शुरूआति खां हेल ताईं यमन में वेड़े दौरान 18,000 खानदान बेघर थी चुका आहिनि। समूरी धुरियूं बिना कंहिं रंडक जे मुतासिर माण्हुनि ताईं गॾियल क़ौमुनि जी इंसानी इमदाद पहुचण ॾियनि।
1: सुबुह जो अचूं था घर निंड मां थियो अचूं था पंप ते था भई तेल अची चढ़ी वियो हलियो ईअं नथा ॾियो त पोइ अमरीका खे चओ असां ते हमिलो करे हिन मुल्क खे बम हणी एटम तबाह करे भला जान त छुटंदी पोइ हुकूमत खे महिरबानी करे त का सस्ताई कनि।
2: थोरो लाहींदा वधीक चढ़ायो छॾनि हाणे हुकूमत ईअं पई इहो ई ग़रीबनि जूं पिटूं लॻंदियूं ग़रीब किथां कमाइनि उहो कराईंदा उहो पेट्रोल भराईंदा 100 रुपए पिया कमाइनि था 100 पेट्रोल लॻाइनि पेट्रोल चाढ़नि पिया।
0: हिकु हफ़्ते दौरान पेट्रोल 26.25 रुपया ऐं डीज़ल 25.27 रुपया फी लीटर महांगा। पेट्रोल जी फी लीटर क़ीमत 375.82 रुपया थी वई। डीज़ल जे फी लीटर क़ीमत में विवाद। डीज़ल जी फी लीटर क़ीमत 403.32 रुपया ताईं पहुची वई। जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जूं क़ीमतूं 14 सेप्टेंबर ताईं बरक़रार रहंदियूं। आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इतिहाद भाड़नि में 5% वाद जो ऐलान करे छॾियो। पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में वाद आवाम जूं दाहूं कढी छॾियूं। सखर में पेट्रोल जी क़ीमतुनि में वाद ख़िलाफ़ शहरनि पारां मोटरसाइकिल जो अलामती जनाज़ो कढी एहतिजाज। फौरी तौर पेट्रोलियम लेवी ख़तमु करण जो मुतालबो हो।

0: 1975 ईस्वी वारी जंग जे हीरो मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद जी 61 वर्सी सदर वज़ीर आज़म ऐं पाक फ़ौज पारां भेटा पेश गुजरात में मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद जी मज़ार ते मेजर जनरल अज़र यासीन जी अॻुवाणी में पाक फ़ौज जथे गुल रखिया फ़ातह ख़वानी पाक फ़ौज जथे पारां मज़ार ते सलामी बि ॾिनी वई मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद खे निशाने हैदर सां नवाज़ियो वियो हो सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त असांजा शहीद वतन जे दिफ़ा ख़ातिर दुश्मन ॾो फौलादी भित बणिजी बीठा रहिया क़ौम खे शहीदनि ते फ़ख्रु आहे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ऐं टिनी हथियारबंद फ़ौजुनि जे सरबराहनि पारां बि शहीद मेजर अज़ीज़ भट्टी खे भेटा पेश 1975 ईस्वीअ जी जंग में बरकी सेक्टर वटि शहीद मेजर अज़ीज़ भट्टी 5 ॾींहं ऐं रातिनि ताईं वतन जो दिफ़ा कंदे शहादत माणी जजिस खे परॾेही दॿाउ खां आज़ादु करण लाइ कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली कई आहे इंसाफ़ जी हुकमरानी वक़्त जी ज़रूरत आहे चीफ जस्टिस या फर्दी जो अदालती निज़ाम में सुधारनि ऐं आवाम खे तकिड़े इंसाफ़ जी फरहमी जे हवाले सां क़ौमी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताबु चीफ जस्टिस या फर्दी चयो त आवाम जे इतमाद लाइ जजिस खे बाख़्तियार बणाइण अदलियात जो मक़सदु आहे मातहत अदलियात जा जज मुश्किलातुनि बावजूदि पंहिंजूं ज़िमेवारियूं सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि ज़िले अदालतूं इंसाफ़ जे निज़ाम में हिकु रंग जी हरी जी हिसियत रखंदियूं आहिनि ज़िले अदालतुनि ऐं हाई कोर्ट्स विच में राब्तनि खे वधीक मज़बूत करणो पवंदो अदलिया सां लाॻापियल माण्हू ईमानदाराणे अंदाज़ में पंहिंजा फ़र्ज़ सर अंजाम ॾियनि IPP चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी पारां MRD तारीख़ दौरान कैन शाह जे शहीद थी वियल 11 ॼणनि जी वर्सी ते खेन भेटा पेश बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त कैन शाह जे 11 शहीदनि जी क़ुर्बानी यादि ॾियारे थी त जमहूरियत जी बहाली लाइ घणी क़ीमत अदा कई हुई शहीदनि जे ख़ानदाननि पंहिंजनि प्यारनि जे विछोड़े जो दर्दु भोगियो पीपल्स पार्टी सदन मिशन खे अॻिते वधायो खैरपुर नाथन शाह जा शहीद हथेकाली हुआ पर आमरियत जूं बंदूकूं बि हुननि जा हौसला न टोड़े सघियूं खैरपुर नाथन शाह जा शहीद हमेशह तारीख़ ऐं आवाम जी दिलनि में ज़िंदा रहंदा
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: This program is brought to you by
3: Bank Islamini Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
5: ढाडो सुठो
4: GAFM 88 नेटवर्क
6: सिंध की आवाज

मेरे तमाम सुनने वाले लिसनर्स को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, जी फॉर मीडिया सर्कल की तरफ से प्यार भरा सलाम। तो जी जनाब, आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बखर आफियत हंसते मुस्कुराते हमेशा की तरह आप लोग आज भी मेरे साथ होंगे। तो जी जनाब, मैं हूँ आप सबकी अपनी प्यारी सी और उसी आवाज के साथ अपनी प्यारी प्यारी सी आरजे कोमल खान। इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं जी एफएम सखर से और प्रोग्राम हमेशा की तरह आप लोगों के लिए आवाज का रिश्ता। जी बिल्कुल, आवाज प्रोग्राम आवाज के रिश्ते में मैं हूँ आप सबकी अपनी आरजे कोमल खान और आवाज का रिश्ता दिल से दिल तक। जी बिल्कुल, आवाज का ही तो रिश्ता होता है, आवाज से ही तो रिश्ते बनते हैं। इस तरीके से आपके साथ रहूंगी मैं और पूरा पूरा हम लोग टाइम देंगे आज शाम 5 से शाम 7 बजे तक मैं आप लोगों के साथ ही साथ रहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ होंगे, जिधर होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, कमेंट्स करके प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी शमूलियत के बारे में बताएंगे कि भाई आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे सुन रहे हैं। अच्छा जी जनाब, तुम्हारी तरफ से सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना है कि आप लोग को शाम बखैर। लो सुबह में आते हैं, शाम में कहती हूँ भाई शाम बखैर मेरे तमाम लिसनर्स को, पैर पैर लिसनर्स को, क्योंकि इस वक्त 5 बजे का टाइम है और ये टाइम कोई भी नहीं, तो हर कोई फ्री होने लगता है। शाम का टाइम है, ठंडा ठंडा टाइम होता है। इस वक्त सब अपने अपने घरों की तरफ रवा तमा होते हैं, चाहे वो इंसान हो, शहरिंग हो, परिंद हो या फिर कोई भी जानदार, वो अपने अपने मंजिल की तरफ, अपने रस्ते की तरफ रवा तमा होते हैं। कोई ट्रैवल में सफर करके दौरान मुझे सुन रहा है, वो भी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। कोई घर में है, कोई ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा है, या फिर बच्चे हैं जो ट्यूशन जा रहे होते हैं, अकेडमी जा रहे होते हैं, कोई नहीं भी जा रहे होते। तो जैसे जहाँ पर हर जगह सुन रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवा तमा होता है और इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ साथ आवाज का रिश्ता। जी बिल्कुल, शाम को इस टाइम इंसान के साथ और दूसरी मखलूकात के साथ जो भी नए भेज दुनिया में और उनके साथ साथ ये जो एक सूरज है, वो भी अपनी मंजिल की तरफ रवा तमा है। दुनिया का एक निजाम, एक कारवां अपने टाइम पर अपनी मंजिल की तरफ सब चल रहे हैं। वही चीज है कि आज जिसे खत्म, आज सूरज डूब रहा है लेकिन वो हमें एक उम्मीद देकर जा रही, कल मैं फिर आऊंगा, वो फिर आएगा। तो इसी तरीके से हमारी भी उम्मीदें होती हैं बहुत सी, लेकिन हमें उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगानी चाहिए क्योंकि वही पूरा करते हैं। इंसानों से लगाई हुई उम्मीदें जो है, इंसान हम कहते हैं ना कि हमें धोखा मिलता है, तो भैया इंसान से उम्मीद लगाना, जिसको पता ही नहीं आपने उससे क्या उम्मीदें लगाई हैं।

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन.
2: जिसकी तामीर पर होती है वाह वाह,
3: मजार है वो मीर मासूम शाह का,
2: शहर पर करता है राज.
4: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप. वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
5: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है.
6: सुनते रहो जी एफ एम 90.8.

अतिथि जनाब प्रोग्राम आवाज के रिश्ते में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते को और मजबूत करते हैं। तो जी बिल्कुल, हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा रहता है हमेशा की तरह। अरे जी, तो मेरे पास कुछ कमेंट्स भी, तो मैंने कहा चले वो भी शामिल करें। तो एक अच्छा सा जो सॉन्ग होता है वो प्ले करूंगी अपने लिसनर्स के लिए। हाँ तो जी, हमने सबसे पहले ज्वाइन किया था साबतपुर से थे, बलोचिस्तान से नज़ीर खोसो साहब, इनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और ये हमारे बहुत अच्छे से लिसनर्स हैं। ये हर शो में, मतलब हर किसी के शो में शामिल होते हैं और रहते हैं, मेरे तो हर शो में शामिल होते हैं। अच्छा जी, इन्होंने एक अच्छी सी बात लिखी है, मैं प्रोग्राम में शामिल करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इन्होंने लिखा है कि पैसा कमाने में वक्त लगता है, मगर उसे खोने में कभी कभी एक गलत फैसला काफी होता है। इसलिए हर मौके पर जो बहुत बड़ा फायदा दिखाए, जरूरी नहीं कि उसे पकड़ लेना चाहिए। कभी

ये फ्रांस इनका मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने लिखा है कभी बेचारा बिना भी कामयाब हो कामयाबी होती बचाए बिना भी कामयाबी होती है शायद ये कुछ ऐसे लिखना चाह रहे थे, पेनल टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है।

इसके साथ ही सबको सलाम कहा है, तो जी बिल्कुल मैं तो सबको आपको सलाम। और चलते चलते थोड़ा सा टाइम में चलते चलते मेरा मतलब है कि प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। अभी हम नहीं चाह रहे, अभी हम यहीं पर हैं, ठीक है ना। तो आवाज के रिश्ते में आप आरजे कमर शाम 7 बजे तक आपके साथ रहेगी और आप भी मेरे साथ होंगे, उम्मीद करती हूँ। अच्छा जी, इसके साथ ही अब्दुल रजाक साहब हैं और ये कहते हैं मोहम्मद खान और बेवफा जमान, और ये इन्होंने हमें ज्वाइन किया है खाली पोटा स्टाफ से, प्रोग्राम सुन रहे हैं ये हमारा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारा शो सुन रहे हैं। ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम कमल खान, कैसी हैं आप बहन? तो जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम कमल खान, हमेशा की तरह शाद बशाश खुश कर आप लोगों के साथ, और आप लोग को भी यही दुआ देती है कि आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, प्रोग्राम में एक और सॉन्ग प्ले करती हूँ, वरना बोलिए कमल खान बातें करती है, सॉन्ग कम प्ले करती है। तो जी बिल्कुल, एक और मैं सारे अली बागर की खूबसूरत सी आवाज में ये ट्रैक प्ले कर चुकी हूँ कोक स्टूडियो का, मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें मलंग। थोड़ा सा ऐसा भी म्यूजिक होना चाहिए ना, हर वक्त इंसान को सैड भी नहीं रहना चाहिए, 4 दिन की जिंदगी हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी गुजारें।

0: रणजी टीम टिन मैचेस ते बथल टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के व्हाइट वॉश करे छो परमिंगम टेस्ट के चौथे इन इंग्लैंड वधाता पाकिस्तान के अठ विकेटन ता शिकस्त पाकिस्तान जो 61 रन वारो हदफ इंग्लिश टीम बिन विकेटन के नुकसान से हासिल करे वरतो मोहम्मद अब्बास पहरे ओवर में इंग्लिश टीम के बिन्ही ओपनर्स बेन डक्ट एमएलओ गे के आउट
1: उहो खतरो अॼु बि मौजूदु आहे। सूबनि खे इस्लामाबाद साज़िश वांगुरु बि थींदियूं रहियूं आहिनि। सिंध खे हानियो रसाइण में सिंध जा पंहिंजा माण्हू मुलोस रहिया आहिनि। वञुनि लाइ सिंध असेंबली हिमायत में वोट ॾिनो। हिकु सदी जी तारीख़ में सिंध ते 4 हमला थिया। चइनि हमलनि में सिंध जूं शख़्सियतूं मुलोस रहियूं। बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज़ बुगटी चयो आहे त कोयटा में वेही सॼे बलोचिस्तान खे कंट्रोल करणु मुमकिन आहे। बलोचिस्तान में नवां सूबा इंतिज़ामी बुनियादनि ते ठहणु घुरिजनि। बलोचिस्तान में अढाई सालनि जी कंहिं हुकूमती मुआदे जी ॼाण नाहे। जेसीं ताईं उहिदे ते आहियां आवाम जी ख़िदमत जारी रखंदुसि। बलोचिस्तान मां 11 लख मुहाजरनि खे वापसि अफ़गानिस्तान उमाणियो वियो आहे। बलोचिस्तान में आख़िरी दहशतगर्द जे ख़ात्मे ताईं जंग जारी रहंदी।

इतलाइन त पीटीआई जी लॉन्ग मार्च में हथियारबंद ईंदा अहिड़ा बि माण्हू हूंदा जेके बलूचिस्तान ऐं केपी में दहशतगर्दी जी कार्रवाई में मुलवस आहिनि अहिड़े जथे खे रोकण लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो फ़र्ज़ु आहे। राणा सनाला जी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस राणा सनाला चयो आहे त पीटीआई जे लॉन्ग मार्च मां तवकन आहे त पुरमन हूंदो। पीटीआई जो तर्जुमान चवे थो त इस्लामाबाद वञी हुकूमत कराईंदासीं, इहे माण्हू लाज़मी दहशत पकड़ींदा। मामिलो अदालत में ॿुधणी हेठि आहे। अदालती फ़ैसिले ऐं क़ानूनी घुर्जुनि तहत लॉन्ग मार्च खे डील कयो वेंदो। ईरान जंग जल्द ख़त्म थी वेंदी। जंग ख़त्म थियण बाद पेट्रोलियम शयुनि जूं क़ीमतूं घटिजी वेंदियूं। सऊदी वलीअत सुठो दोस्त आहे। समूरा मामला ठीक थी वेंदा। डबलन में सदर ट्रंप जूं आयरलैंड जे वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं। सदर ट्रंप चयो त हुसी अमरीका ख़िलाफ़ु जंग में शामिल नथा थियणु चाहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में सऊदी जे तेल वारी पाइपलाइन ते हमले में ईरान मुलवस आहे।

इराक खां सऊदी ते ड्रोन हमलो केतिरा ई माण्हू ज़ख़्मी थियण जा इतला। सऊदी रियाज़ ऐं मदीना रीजन में अहम तेल जी पाइपलाइन आर्ज़ी तौरु बंदि करे छॾी। 1200 किलोमीटर डिघी पाइपलाइन ज़रिए रोज़ानो 40 खां 50 लख बैरल तेल मुंतकिल कयो वेंदो हो। सऊदी परॾेही वज़ार जो चवणो त इराक मां उन इलाइक़े खां हमिलो कयो वियो जिते ईरान नवाज़ हथियारबंद ग्रुप सरगरम आहे। इराकी वज़ीर आज़म जी दरख़्वास्त ते फ़िलहाल जवाबी कार्रवाई न करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। इराकी वज़ीर आज़म आला फ़ौजी कमांडर खे बरतरफ़ करे छॾियो। इराक ईरान सां मिलंदड़ चलमचा बार्डर क्रॉसिंग बि बंदि करे छॾी। कतर मिस्र ऐं बेरिन पारां सऊदी तेल पाइपलाइन ते हमले जी मज़म्मत। पाकिस्तान जी सऊदी अरब जे तेल वारी पाइपलाइन ते हमले जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। परॾेही वज़ार जे तर्जुमान चयो आहे त रियाज़ ऐं मदीना जे इलाइक़नि में पाइपलाइन खे ड्रोन हमलनि सां नुक़सान पहुचायो। शहरी ज़ख़्मी थिया आहिनि ऐं सऊदी अरब में शहरी ठिकाणनि खे निशानो बणाइण आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। ड्रोन हमला सऊदी अरब जे ख़ुदमुख़्तियारी ऐं इलाइक़े सलामती जी बि खुलियल भञकड़ी आहिनि। ड्रोन हमला ख़िते जे अमुन सलामती ऐं इस्तेहकाम जे लाइ संगीन ख़तरो आहिनि। पाकिस्तान सऊदी अरब जी ख़ुदमुख़्तियारी इलाइक़ाई सलामती ऐं खुशहाली जी भरपूर हिमायत करे थो। सऊदी अरब उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ु ठहराउ जी हिमायत जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त असां जंग जी हालति में आहियूं। सामूंडी पाबंदियूं ऐं नाकाबंदी जंग जे बराबरि आहे। अहिड़ी सूरत में असां कुझु बि कयूं त उनखे दिफ़ा सॾियो वेंदो आहे। हरमोज़लंग हाणे बि ईरान जे कंट्रोल में आहे। दुनिया खे तेल जी वधंदड़ क़ीमतुनि जो ज़िमेवार अमरीका खे क़रार ॾियणु घुरिजे।

0: यमन जे उसी बागन जो वडो एक्शन आम सामूली लंग बाबेल मंदम जे बेट हेवन ते कब्जो करे वरतो। हुसैन जी तंजीम अंसार ला यूरोप ए एशिया के मिलाईदड़ आम सामूरी तजारती लंग बाबेल मंदम जी निगरानी शुरू करे छदी। हुसी बागन गाड़े समुंड जी साली शहर जबाब ए अलमखा शहर में गडल कौमन जे इमदादी मरकज जो कंट्रोल संभाले वरतो। हुसी बागन जे बाबेल मंदम जो कंट्रोल संभालण जी सूरत में आलमी तजारत के कापारी धक लगण जो खदशो। यमनी हुकूमत जे हथियारबंद फौज जे तर्जुमान चयो आहे त अलमखा ए जबाब शहरन में हुसैन जी तंजीम अंसार उल्लाह जे ठिकाणनि ते हमला कया पिया वञनि। वॾे अंग में हुसी वेढ़ाक मारिया विया आहिनि। गाॾियूं ऐं हथियार तबाह करण जी बिदावा। हुसी फ़ौजी तर्जुमान जो चवणु आहे त सऊदी अरब खां सवाइ सभिनी लाइ बाबेल मंदब खुलियल आहे। गॾियल क़ौमुनि पारां यमन जे शहर अलमखा में आलमी इदारे जी इमदादी मर्कज़ ते हुसी बागन जे कब्ज़े ते गणती जो ज़हार। तर्जुमान फरहान हक चयो आहे त हुसी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

वन, थ्री टाइम आपने एट प्रेस करना है, वन टाइम वन आपने प्रेस करना है, और अपना मैसेज अपना पैगाम सेंड कर देना है आरजे कमल के पास, जो बिल्कुल मैं आपका प्रोग्राम में वो मैसेज शामिल भी करूंगी। और हम लोग प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं और आपका टाइम भी कम रहता है, पता ही नहीं चलता आप लोगों के साथ ये ताल्लुक या रिश्ता इख्तिताम की तरफ भी चलने लगा है। तो जी बिल्कुल अच्छा जी, प्रोग्राम में ये हमें इन्होंने जिन्होंने ज्वाइन किया था मैं इनके नाम भी शामिल कर चुकी हूँ और जो देखे उनको भी शामिल।

0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इनमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ मिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: यार मछा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई ना ही थी।
3: जो भला छा छुआ तोखे, साफ साफ बुधा मसलो छाए।
2: यार एक मसलो हुजे त बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल है, न भूख सही लगे थी, आई जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वन था, आई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही ना आया।
3: यार तुझा घणा न, बस एक ही मसलो आ।
2: एक इहो की है?
3: हां तुझो मैं तो खराब आ, सा तो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न होंदो त भूख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो, आई न ताकत मिलंदी।
2: तो पो मां छा कया?
3: सोलो हला है, इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, एक कुदरती जुजन मां तैयार कैल कोर्स, तुझे जिस्म जो हिस्सो बन जी, तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत करे छरींदो, भूख खुली वेंदई, खादो सुठे नमूने हजम थींदई, पेट भूख जण खत्म, सुस्ती खत्म, जिस्म में ताकत ईंदई।
2: वाह यार वाह जी, गाल बुधाई थी, पर ये किथे मिलंदो?
3: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी, आई राबते जे लाए नंबर भी अथई 0305-58-00-616। शिफाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
1: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमाज शहर सखर में। मेदे जा मसला, गैस, बदहजमी, कब्ज, खूनी ऐं बादी बवासी, जनाना बीमार समेत बिन मर्जन जो इलाज करे रहयो आहे। रोजाना सुबह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताई। जुमो मोकल, एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक, वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप, नज़द पीएसओ पेट्रोल पंप, रेस कोर्स रोड सखर। राब्ते जे लाइ 0311-2082-600 0333-7143-111।
4: सखर और गिरदोनवा की गरीब आवाम के लिए खुशखबरी, आंखों का मुफ्त इलाज उनकी दहलीज पर। मुर्शिद सगोरा, बाबा शेव भजन साहब की 92वीं सालगिरह की खुशी में आंखों का मुफ्त कैंप, जहां मिले तमाम मरीजों को मुफ्त चेकअप, मुफ्त ट्रीटमेंट, मुफ्त दवाएं, मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त ऐनकें, सब कुछ मुफ्त। बस खिदमत का मौका दें। याद रहे 16 सितंबर बरोज बुध सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल और बालाईसिंध के मशहूर आंखों की बीमारी के माहिर डॉक्टर ओम प्रकाश मंगलानी आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। एड्रेस हिंदू पंचायत अस्पताल, म्यानी रोड सखर। राबता 0333-7125-706 0333-7134-147 और 0300-3123-267।
5: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हो, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन, GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच, बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे।
6: This program is brought to you by
0: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
1: Khoobsurti hai jo asal raaz,
7: सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
8: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

और इतवार शाम 6 से 7 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ हमेशा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरा पूरा पूरा साथ देते हैं, प्रोग्राम में शामिल देते हैं। और इस वक्त टाइम हो रहा है 6:52, यानी हमारे पास सिर्फ 8 मिनट्स बचे हैं प्रोग्राम

0: वफ़ाक़ी हुकूमत नवनि सूबनि वारे मामले ते मुल्क में रेफरेंडम कराइण जो इशारो ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि वारे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त नवनि सूबनि जे हवाले सां फ़ैसिलो पार्लियामेंट कंदी, गॾियल पार्लियामेंट मंज़ूरी ॾिनी त उन खां पोइ ई रेफरेंडम थींदो। हुकूमत अकेले सिर इहो फ़ैसिलो नथी करे सघे। मुस्लिम लीग नून समेत सभई पार्टियूं पार्लियामेंट जे फ़ैसिले खे तस्लीम कंदियूं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउला चयो त इकनॉमिक फोरम या सेमिनार में सूबनि वारे बहस जो नतीजो न निकिरंदो। अवाम नवा
1: मिल्कियतूं फबाइण ऐं सूबाई वसीलनि ते कंट्रोल जूं रिथाऊं तयारु कई वियूं आहिनि। सिंधी डेल्टा खे हथु वठी तबाह कयो वियो आहे। डेल्टा जी तबाही सबबि हज़ारे खानदान लॾु पलाण करे विया आहिनि। एस यू पी जे सरबराह सैद ज़ैन शाह जो सिटी कोर्ट में सेमिनार खे ख़िताब। नाले वारी माशी माहिर कैसर बंगाली चयो त सिंध जा बासर माण्हू सिंध जे मुफ़ादनि ते समझौतो करे वेंदा आहिनि। उहो ख़तरो अॼु बि मौजूदु आहे। सूबनि खे इस्लामाबाद सां माहिदनि ते होशियारु रहणु घुरिजे। सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं अॻु बि थींदियूं रहियूं आहिनि। सिंध खे हानियो रसाइण में सिंध जा पंहिंजा माण्हू मुलविस रहिया आहिनि। मञुनि टलाए सिंध असेंबली हिमायत में वोट ॾिनो। हिकु सदी जी तारीख़ में सिंध ते चार हमला थिया। चइनी हमलनि में सिंध जूं शख़्सियतूं मुलविस रहियूं।

सूबे जे विरहाङे खे गदारी करार ॾियण सभ खां वॾी गदारी आहे। सूबा इंतिज़ामी यूनिट खां वधीक कुझु न आहिनि। एम क्यूम जे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ालिद मक़बूल सिद्दीक़ी जो कराची में डायलॉग खे ख़िताब। ख़ालिद मक़बूल चयो त पहिरीं अदमशुमारी करायो, पोइ ईमानदारी सां चूंडूं करायो। हींअर कराची जी आबादी 2 करोड़ खां वधी आहे। असांजा माण्हू क़ाइदे आज़म जे पाकिस्तान में आया हुआसीं। ख़बर नाहे कंहिं भुटो जे पाकिस्तान में धिकियो। पाकिस्तान जी तारीख़ 5000 साल न पर 80 साल पुराणी आहे। 1947 ईस्वी में कराची सिंध जो हिसो न हो। ॿिए कंहिं बस में पवण जी ज़रूरत ई नाहे।

हाणे तरमीम खां पोइ चइनि सूबनि जो निज़ाम फिलाप थी वियो। ही निज़ाम कमु नथो करे सघे। वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल जो एक्सपो सेंटर कराची में ख़िताब। एम क्यू एम जे मुस्तफ़ा कमाल चयो त माण्हू इंतिज़ामी बुनियादनि ते नवनि यूनिटनि जी हिमायत करे रहिया आहिनि। सूबनि खे नंढो करण जी ज़रूरत आहे। लाहौर, पेशावर ऐं कोयटा हिकु हिकु शहर ऐं ज़िलो आहिनि। कराची बि हिकु ज़िलो हूंदो हो, हाणे 7 ज़िला आहिनि। जेको कमु कराची में कयो आहे उहो सॼे मुल्क में करियूं त उन ते एतिरा शाजो आहे।

मकानी चूंडुनि लाइ हदबंदियुनि सूधो आरओस जे मुक़ररी लाइ मैकेनिज़म घुरबल आहे। एडमिनिस्ट्रेटर रुगो मामूल जो वहिंवार ॾिसंदा। इलेक्शन शेड्यूल जारी थींदे ई इंतिज़ाम संदनि हवाले थी वेंदा। अमरीका सूधो दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में बि ईअं थींदो आहे। सिंध असेंबली में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बाबति ख़ुसूसी कमेटी जे इजलास बाद घर वज़ीर जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। ज़ियालनि जार चयो त अपोज़िशन जूं बहितर तजवीज़ूं मञियूं वेंदियूं आहिनि। चाहियूं था मकानी कानून में वधीक बहितरी अचे। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल लाइ MQM जूं के बि तजवीज़ूं न मिलियूं आहिनि। PTI जे शबीर कुरैशी चयो त हुकूमती तजवीज़ुनि खे रदि कयो आहे। हुकुमरान अणचूंडियल नुमाइंदनि खे UC में आणणु मुनासिबु न आहे। जमायत इस्लामी जे मोहम्मद फारूक चयो त हुकुमरान पंहिंजे ई मेयर खे बेअख़्तियार रखणु घुरनि था। जमायत इस्लामी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर जी मुक़ररी जी मुखालफ़त कई आहे। मुतादाद जे ता अमन चयो त हुकुमरान जाली मेयर खे मज़बूत करण लाइ कानून साज़ी करे रहिया आहिनि। असां चाहियूं था आर्टिकल 140 तहत मेयर खे अख़्तियार ॾिना वञनि।

चलाइन त पीटीआई जे लॉन्ग मार्च में हथियारबंद ईंदा अहिड़ा बि माण्हू हूंदा जेके बलोचिस्तान ऐं केपी में दहशतगर्दी जी कार्रवाइनि में मुलवस आहिनि अहिड़े जथे खे रोकण लाइ फोर्सिस एजेंसीज जो फर्ज़ आहे। राणा सनावला जी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, राणा सनावला चयो त पीटीआई जे लॉन्ग मार्च मां तवक न आहे त पुरमन हूंदो। पीटीआई जो तर्जुमान चवे थो त इस्लामाबाद वञी हुकूमत किराईंदासीं, इहे माण्हू लाज़मी दहशत पकड़ींदा। मामिलो अदालत में ॿुधणी हेठि आहे। अदालती फ़ैसिले ऐं कानूनी घुर्जियुनि तहत लॉन्ग मार्च खे डील कयो वेंदो। ईरान जंग जल्द ख़त्म थी वेंदी। जंग ख़त्म थियण बाद पेट्रोलियम शयुनि जूं क़ीमतूं घटिजी वेंदियूं। सऊदी वली अहद सुठो दोस्त आहे, समूरा मामला ठीक थी वेंदा। डबलन में सदर ट्रंप जूं आयरिश वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं। सदर ट्रंप चयो त हूसी अमरीका ख़िलाफ़ु जंग में शामिलु नथा थियणु चाहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में सऊदी जे तेल वारी पाइपलाइन ते हमले में ईरान मुलवस आहे।

इराक खां सऊदी ते ड्रोन हमलो, केतिरा ई माण्हू ज़ख़्मी थियण जा इतला। सऊदी रियाज़ ऐं मदीना रीजन में अहम तेल जी पाइपलाइन आर्ज़ी तौरु बंदि करे छॾी। 1200 किलोमीटर डिघी पाइपलाइन ज़रिए रोज़ानो 40 खां 50 लख बैरल तेल मुंतक़िल कयो वेंदो हो। सऊदी परॾेही वज़ारत जो चवणु आहे त इराक मां उन इलाइक़े खां हमिलो कयो वियो जिते ईरान नवाज़ हथियारबंदि ग्रुप सरगर्म आहे। इराकी वज़ीर आज़म जी दरख़्वास्त ते फ़िलहाल जवाबी कार्रवाई न करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। इराकी वज़ीर आज़म आला फ़ौजी कमांडर खे बरतरफ़ करे छॾियो। इराक ईरान सां मिलंदड़ चिमलचा बॉर्डर क्रॉसिंग बि बंदि करे छॾी। कतर, मिस्र ऐं बहरीन पारां सऊदी तेल पाइपलाइन ते हमले जी मज़म्मत। पाकिस्तान जी सऊदी अरब जे तेल वारी पाइपलाइन ते हमले जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त रियाज़ ऐं मदीना जे इलाइक़नि में पाइपलाइन खे ड्रोन हमलनि सां नुक़सान पहुतो। शहरी ज़ख़्मी थिया आहिनि ऐं सऊदी अरब में शहरी ठिकाणनि खे निशानो बणाइणु आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। ड्रोन हमला सऊदी अरब जी ख़ुदमुख़्तियारी ऐं इलाइक़ी सलामती जी बि खुलियल भञकड़ी आहिनि। ड्रोन हमला ख़िते जे अमुन सलामती इस्तेहकाम जे लाइ संगीन ख़तरो आहिनि। पाकिस्तान सऊदी अरब जी ख़ुदमुख़्तियारी इलाइक़ी सलामती ऐं ख़ुशहाली जी भरपूर हिमायत करे थो।

सऊदी अरब उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ु ठहराउ जी हिमायत जा नतीजा भोगणा पवंदा। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त असां जंग जी हालति में आहियूं, सामूंडी पाबंदियूं ऐं नाकाबंदी जंग जे बराबरि आहे, अहिड़ी सूरत हाल में असां कुझु बि कयूं त उनखे दिफ़ा छॾियो वेंदो आहे। हरमोज़ लंघ हाणे बि ईरान जे कंट्रोल में आहे। दुनिया खे तेल जी वधंदड़ क़ीमतुनि जो ज़िमेवार अमरीका खे करार ॾियणु घुरिजे। यमन जे हुसी बाग़नि जो वॾो एक्शन, अहम सामूंडी लंघ बाबे अलमंदब जे ॿेट मेवनि ते कब्ज़ो करे वरितो। हुसिन जी तंज़ीम अंसार लाइ यूरोप ऐं एशिया खे मिलाईंदड़ अहम सामूंडी तजारती लंघ बाबे अलमंदब जी निगरानी शुरू करे छॾी। हुसी बाग़नि गाड़े समुंड जी साहिली शहर ज़बाब ऐं अलमखा शहर में गॾियल क़ौमुनि जे इमदादी मर्कज़ जो कंट्रोल संभाले वरितो। हुसी बाग़नि जी बाबे अलमंदब जो कंट्रोल संभालण जी सूरत में आलमी तजारत खे कापारी धक लॻण जो ख़दशो। यमनी हुकूमत जे हथियारबंद फ़ौज जे तर्जुमान चयो आहे त अलमखा ऐं ज़बाब शहरनि में हुसिन जी तंज़ीम अंसार लाइ जे ठिकाणनि ते हमला कया पिया वञनि। वॾे अंग में हुसी वेड़ाक मारिया विया आहिनि। गाॾियूं ऐं हथियार तबाह करण जी विदावा हुसी फ़ौजी तर्जुमान जो चवणु आहे त सऊदी अरब खां सवाइ सभिनी लाइ बाबे अलमंदब खुलियलु आहे।

0: नाज़रीन न्यू यॉर्क तुंहिंजी ख़बरूं ते वठंदा मुख़्तसर ब्रेक, ब्रेक खां पोइ मां प्रोग्राम ॾिसी सघंदा उपनियुनि ते लिकाज़ी ॾिसंदा रहो टाइम न्यूज़।
1: आपके बाल कमजोर, बेजान और टूटने लगे हैं? अब हल है मोहेयर शैम्पू बाय सिग्नेचर ब्यूटी। 90% कुदरती जड़ी बूटियों और अज्जा से तैयार करता सल्फेट फ्री फॉर्मूला जो बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये शैम्पू खुश्की कम करे, जड़ों की मरम्मत करे और कुदरती हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करे। मोहेयर शैम्पू सिग्नेचर ब्यूटी, वेयर ब्यूटी मीट्स नेचर। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट thesignaturebeauty.com पर अपना ऑर्डर प्लेस करें या मजीद मालूमात के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें 0326-835-1089।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अमेरिका जारियत बंद करे तो अपना हरमुस खुली वेंदो अपना हरमुस बाबत सूमर ते ओमान सां वायदो ते सही थी वेंदियूं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान चयो आहे त अरब मुल्कन जी सरज़मीन तां ईरान ते हमला थिया आहिनि। अमेरिका खे पाबंदियुनि ऐं नाकाबंदी ख़तम करणु घुर्जे। इस्माइल पकई चयो त अपना हरमुस जो कंट्रोल ईरान वटि आहे। तेल क़ीमतनि में वाध जो ज़िमेवार बि अमेरिका आहे। सऊदी अरब उर्दन ऐं जापान खे ईरान ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत करण ते नतीजा भोगणा पवंदा। ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त मुतालबनि जी मञता ताईं अमेरिका सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। यमन जी हुसियन बाबिल मुंडब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आपी रस्ते में गश्त शुरू करे छॾियो। बाबिल मुंडब जे अहम बेट मेवन ते बि कब्ज़े जी दावा यमनी फ़ौज चयो आहे त मखा ऐं बाबिल मुंडब में हुसियन जे थाकनि ते बमबारी कई आहे जंहिं दौरान हुसियन जो वॾो नुक़सानु थियो आहे।

सिंध के दरपेश आइनी मुआशी ऐं आबी चैलेंजेस बाबति सिंध यूनाइटेड लायर्स फोरम जो कराची में सेमिनार। सूबे जे इम्कानी विरहाङे के ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर। ज़ैन शाह ख़िताब कंदे चयो त हुकमरान सिंध खे टुकड़ा करे वसीलनि ते कब्ज़ो करणु चाहिनि था। केसर बंगाली चयो त सिंध खे इस्लामाबाद सां थींदड़ माहिदनि ते अखियूं खोलणु घुर्जनि। आमिर नवाज वड़ाइत चयो त सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ सिंध जो अवाम ऐं वकील मुतहिद आहिनि। बैरिस्टर सलाहुद्दीन चयो त पीसीबी चेयरमैन मुल्क खे क्रिकेट वांगुरु सम्झी रहियो आहे। सूबनि खे विरहाइण जहिड़ा ग़ैर संजीदा नवा तजुर्बा करण बदिरां मसलनि जो हल ॻोल्हियो वञे। अब्दुल हसीब जमाली चयो त सिंध पाकिस्तान जे क़याम लाइ किरदार अदा कयो जंहिंजो क़दुरु करणु घुर्जे। बाबशर चयो त क़ौमी असेंबली खे बि सूबनि जे विरहाङे जो इख़्तियार नाहे, साज़िशनि जो ख़ात्मो आंदो वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: Berg, 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 PM ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: अगर ये फैसला होता भी है कि रेफरेंडम जो है वो करवाया जाए, इसकी इजाजत पार्लियामेंट नहीं देगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा, उसमें अगर अप्रूव होगा तो फिर रेफरेंडम होना है। रेफरेंडम गवर्नमेंट अपने फैसले से नहीं करवा सकते। जो फोरम्स और सेमिनार्स, उससे इस मामले में कोई बेहतरी नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर ओवर रिएक्ट किया है हमारी नजर में, और जिस तरह से वो मामले को ले है सिंध असम्बली में, मैं समझता हूँ कि वो उनका पॉलिटिकल इकदाम था जिससे यकीनन उनको सियासी तौर पे जो है वो फायदा हुआ।
1: वफाकी हुकूमत नवनि सूबनि वारे मामले ते मुल्क में रेफरेंडम कराइण जो इशारो ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि वारे सलाहकार राणा सनाउल्लाह चयो आहे त नवनि सूबनि जे हवाले सां फ़ैसिलो पार्लियामेंट कंदी। गॾियल पार्लियामेंट मंज़ूरी ॾिनी त उन खां पोइ ई रेफरेंडम थींदो। हुकूमत अकेले सिर इहो फ़ैसिलो नथी करे सघे। मुस्लिम लीग नून समेत सभई पार्टियूं पार्लियामेंट जे फ़ैसिले खे तस्लीम कंदियूं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउल्लाह जो चवण हो त इकनॉमिक फोरम या सेमिनार में सूबनि वारे बहस जो नतीजो न निकरंदो। अवाम नवां सूबा चाहे थो त केर बि रोके नथो सघे। पीपुल्स पार्टी सूबनि वारे मामले ते ज़रूरत खां वधीक रदि अमल ॾिनो आहे।

0: डिक्टेटर के काला बाग डैम न टाणे दिनों त सिंध जो ग्राहको किया थन दीदासी सूबन जूं गालियूं करण बंद कयो न त एमआरडी जड़ी तहरीक शुरू थी वेंदी पीपी सिंध जे सदर निसार कोड़े कैनशा में एमआरडी जे शहीदन जी वर्सी के तकरीब खिताब कंदे चयो त निसार कोड़ो चयो त कुछ माण्हू असांखे काक्रोच पिया चवनि जेकॾहिं काक्रोच निकिता त अवां रही न सघंदा सिंध जो विरागो कॾहिं बि मंज़ूर न आहे सूबनि खे इख़्तियार ॾेई ख़ुदि मुख़्तार बणायो वञे सिंध जो अवाम विरागो नथो चाहे
1: एमक्यूएम सिंध जे विरहाङे जो रिंगट बंदि न कयो एमक्यूएम पाकिस्तान जे चेयरमैन ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी चयो आहे त सूबे जे विरहाङे खे गदारी क़रार ॾींदड़ सभ खां वॾी गदारी आहे असांजा वॾा लॾ पलाण करे क़ाइदे आज़म जे पाकिस्तान में आया हुआ ख़बर नाहे कंहिं उन्हनि खे भुटो जे पाकिस्तान में धिके छॾियो अॼु कराची जी आबादी 2 करोड़ खां वधीक आहे समूरे मुल्क में आबादीअ जे हिसाब सां सूबा ठहणु घुरिजनि वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त मौजूदा निज़ाम में मुल्क नथो हली सघे हू कंहिं बि फोरम ते कंहिं बि वक़्तु सूबनि जे हवाले सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे अवाम खे अख़्तियार ॾियणो पवंदो त जंहिंखे पसंदि न करे हुनखे हटाए सघे
2: जो आपने देश किया है जमीन वापस करें तो हमारा

0: अमेरिका जारियत बंद करे तो आबनाए हुर्मुज खुली वो आबनाए हुर्मुज बाबत सूमर से ओमान से माहदे से सयू थी वेंदी। ईरानी सदर मसूद पशकियान है अरब मुल्क की सरजमीन त ईरान से हमला थे। अमेरिका के पाबंदियों नाकाबंदी खत्म करण घुर्जे। इस्माइल बकाई आबनाए हुर्मुज को कंट्रोल ईरान वट है। तेल कीमत में वाद जो जिम्मेवार भी अमेरिका है। सऊदी अरब उर्दन ए जापान के ईरान खिलाफ ठहराव की हिमायत करण से नतीजा भोगना पौंदा। ईरान की कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीजी तो मुतालबन की मंजता ती अमेरिका से गाल नी दियो।
1: यमन के हुसैन बाबुल मुंदब जो कंट्रोल संभालण बाद आलमी आपी रस्ते में गश्त शुरू कर छो। बाबुल मुंदब के अहम बेट मेवन से भी कब्जे की दावा। यमनी फौज है मखा ए बाबुल मुंदब में हुसैन के ताकत से बमबारी कई है जै दौरान हुसैन को वो नुकसान थो है।

पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़म्मत हमला खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ ख़तरो करार परॾेही तर्जुमान मूजिबि सऊदी अरब जे तेल लाइननि ते ड्रोन हमलनि सबबि शहरी बि ज़ख़्मी थिया आहिनि हमला आलमी कानूननि जी भञकड़ी आहिनि हमलनि सां खिते जो अमुन इस्तेहकाम मुतासिर थी सघे थो

0: इंतजार कंदो रात मुझी घरवारी जी डिलीवरी यकीन कंदो मा गाडी वाले दे बिम मा उने के जवा डिलीवरी मसलो हलो खैरपुर चई पेट्रोल मांगो थीया 3000 रुपया किराए वठन मा खैरपुर ताई आखिर तड़पी तड़पी जको उने जो बार होत थी एड़ो असा ना कई हशर
1: आनु जो जीण जंजाल थिया गाडी कढण जेड़ा कोन मानु परेशान लगा पे
2: अवामी से लुटी थी आए भाई मानु परेशान खुद कशन दे मजबूर है
3: महंगाई जो भूत है होटल मां निकली आयो गरीब मां केडा
4: पचा सडा भुखते मरण ता 500 कमायो ता 500 पूरा ही ना है ते हुकमता से वोट देई अस गरीब फांसी आयो
5: सी रेवर आयो असा ते वडा असर पोजी आ न असा जो रोजगार बंद थी वा
6: असर पुरो आ जायो पाव जाओ तो असर आ जुलो ना जोनी रोयो ता मा ला जा ता दो मा ला के मु
7: दाल चढ़े थी सब्जी दिसो चढ़े थी के चढ़े तो अटो दिसो 20 रुपया 40 रुपया थी
8: मिर्च 16% बसर 125% गोश्त 15% डबल रोटी 8% महांगो थी वही शुमारियात खाते महंगाई वधण की तस्दीक कंदे बिजली 25% एलपीजी 55% महांगी थी है पटाटा मुर्गी बेजा खंड सस्ती थी है
9: इस्लामाबाद की दहशतगर्दी टोड़ अदालत केपी के वे वजीर सहल अफरीदी समेत चैन जवाबदार के गिरफ्तार कर पेश करने का हुक्म दई छो रमनाथ थाने के दाखिल केस में नामजद सहल अफरीदी सूबाई काबीना मेंबर मीना खान अफरीदी एमएनए शाहिद कटक शफी जान जा नवा गिरफ्तारी वारंट जारी
8: कराची के इलाके सफूरा चौरंगी वट प्रोफेसर ते तशद्दुद वारो वाक्यो किन पेश आयो असल डोह कंजो हो बिनी धुरन जी केटीएन न्यूज सा तफसीली गाल बोल मुतासर प्रोफेसर आरिफ साकी चयो है त सफूरा चौरंगी वट एक डाले रिवर्स में गाड़ी के टक्कर हयो डाले वाले के नुकसान भरे देण जो चयो त नौजवान कोनेन वैश्याणो तशद्दुद कयो एक फर्द जे अमल पूरे खानदान के बदनाम कयो है डाला कल्चर खत्म थण गुरजे अगुण वफाकी वजीर अली गोहर शाह दुनिया में कानून आहे किथे पोयां जेको गाड़ी हणे कसूर उनजो हुंदो आहे जेड़ा थींदा आहिनि कतल भी थी वेंदा आहिनि पर आईन ऐं शरीयत मूजिब दिफ़ा जो हक़ बि आहे जिते जेड़ो थियो उते अॻु में बि जेड़ा थिया आहिनि जड़नि में खानदान जा माण्हू मुलविस आहिनि उन्हनि जूं नज़रूं मुंहिंजे प्लाट में आहिनि असांजो मौलवीअ सां ठाह थी वियो हो राशिद शाह वञी उनखे भड़कायो

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हमें एक उम्र लगती है, कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 PM ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: अगर ये फैसला होता भी है कि रेफरेंडम जो है वो करवाया जाए, इसकी इजाजत पार्लियामेंट नहीं देगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा, उसमें अगर अप्रूव होगा तो फिर रेफरेंडम होना है। रेफरेंडम गवर्नमेंट अपने फैसले से नहीं करवा सकती। जो फोरम्स और सेमिनार्स, उससे इस मामले में कोई बेहतरी नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर ओवर रिएक्ट किया है हमारी नजर में, और जिस तरह से वो मामले को ले है सिंध असम्बली में, मैं समझता हूँ कि वो उनका एक पोलिटिकल इकदाम था जिससे यकीनन उनको सियासी तौर पे जो है वो फायदा हुआ।
1: वफाकी हुकूमत नव मनसूबन वाले मामले ते मुल्क में रेफरेंडम कराने जो इशारो दे छो। वजीर आजम के सियासी मामलों वाले सलाहकार राणा सनाउला चाहे तो नव मनसूबन के हवाले से फैसलो पार्लियामेंट कंदी। गडियल पार्लियामेंट मंजूरी दिनी तो उनका पोई रेफरेंडम थींदो। हुकूमत अकेले सिर यो फैसलो नथी करे सके। मुस्लिम लीग नून नवन नून समेत सभी पार्टी पार्लियामेंट के फैसले के तस्लीम कंद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउला चयो तो इकोनॉमिक फोरम या सेमिनार में सूबन वारे बहस जो नतीजो न निकरंदो। अवाम नवा सूबा चाहे तो केर भी रोके न तो सके। पीपुल्स पार्टी सूबन वारे मामले से जरूरत का वधीक रद्द अमल दिनो आहे। डिक्टेटर के कालाबाग डैम ठाण न दिनो तो सिंध जो विरांगो किण डींदी। सूबन जो गाल बंद न तो एम आर डी जड़ी तहरीक शुरू थी वेंदी। पीपुल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़े जो केन शाह में एम आर डी के शहीदन की वर्सी तकरीब के खिताब। निसार खोड़ो चयो तो कुछ मानू असा के काक्रोच पे चवन, जेकर काक्रोच निकता तो अवा रही न सकंदा। सिंध जो विरांगो कदें भी मंजूर ना है। सूबन के अख्तियार दई खुद मुख्तियार बनाया वे। सिंध जो अवाम विरांगो न तो चाहे। एमक्यूएम सिंध के विरागे जो रिंगट बंद न कयो। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी चयो आहे त सूबे के विरागे के गदारी करार दींदड़ सब का वड़ी गदारी आहे। असांजा वड़ा लड़ पड़ान करे कायदे आजम के पाकिस्तान में आया हुआ। खबर ना है कहें उनन के भुट्टो के पाकिस्तान में धिके छो। अज कराची की आबादी 2 करोड़ का वधीक आहे। समूरी मुल्क में आबादी के हिसाब से सूबा ठहण घुर्जन। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल चयो तो मौजूदा निज़ाम में मुल्क न तो हली सके। हु कहें भी फोरम ते कहें भी वक्त सूबन के हवाले से गालहण लाए तैयार आहे। अवाम के अख्तियार देनो पौंदो तो जैंके पसंद न करे उनके हटाए सके।
2: ये काम हुआ तब से लेकर कहा गया है भाई इसको तोड़ेंगे। उनके में मुगतर है ये तो कोई जरूरत नहीं कर सकेगा, लेकिन ये जो खाया है जो कब्जा किया है कि ये जो आपने सौदे किए ये वापस करें, ये आपके इस रेजुलेशन में तुम ना करें कि जो आपने वेस्ट किया है जमीन वापस करें। तो हमारा लैंड

सिंध के कौमपरस्तन वकीलन ए साजा वंदन पारा सिंध की वहदत खिलाफ थींदड़ साजिशन के नाकाम बनाने जो वचन। सिंध यूनाइटेड लायंस फोरम के सेमिनार में सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ ठहराव भी मंसूर। कराची में सेमिनार के खिताब कंदे सैयद जैन शाह चयो तो मोहब वतन सिंधी कदें भी सिंध टोड़न न डींदा। अवां ठहराव वारो ड्रामो करे करप्शन जो हिसाब किताब गुम नथा करे सको। सूबन की घणी आमदनी वारन शहरन ते वफाक कब्जो करे वेठो आए। पोर्ट सिंध के वापस कयो। पंजाब की लखे एकड़ जमीन आबाद करण लाए सिंध के बंजर बनाने की साजिश थी रही है। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज वड़ाइच जो चवण हो तो सिंध के विरांगे खिलाफ सिंध जो अवाम ए वकील मुतहद हैं। सिंध बार काउंसिल के सदर अब्दुल हसीब जमाली चयो तो सिंध पाकिस्तान के क्याम लाए किरदार अदा कयो जो कदर करण घुर्जे। बैरिस्टर सलाउद्दीन चयो तो मोहसन नकवी मुल्क के भी क्रिकेट वांगुर समझी रो है। सूबन के विरायण जड़ा गैर संजीदा ए नवा तजुर्बा करण बदरा मसलन जो हल गोल्यो वे।

0: सिंध के मकानी निज़ाम बाबत तरमीमी बिल से गौर वीचार लाए सिंध असेंबली की 12 रुकनी खौस कमेटी जो पे इजलास एम क्यूम जमात इस्लामी ए पीटीआई तरमीमी बिल के रद्द कर छो कमेटी सरबराह ज़ियाल अंजार तो मकानी निज़ाम बाबत एम क्यूम जो बिल ना आयो असेंबली की इजाजत से ही उन गौर किया नओं चूंड शेड्यूल जारी थींदे ही इंतज़ाम हवाले थी वेंदा आहिनि एडमिनिस्ट्रेटर रुगो रोज़ाने जा मामला ॾिसी सघंदो एम क्यू एम जे तहा अहमद चयो त दांदनी ऐं जाली मेयर खे मज़बूत करण लाइ कानून साज़ी कई पई वञे जमात इस्लामी जे मोहम्मद फारूक चयो त हू सियासी एडमिनिस्ट्रेटर सां इतफ़ाक़ नथा कनि अहिड़ी तरमीम आई त अदालत जो दरवाज़ो खिड़कायो वेंदो पीटीआई जे शबीर कुरैशी चयो त अणचूंडियल नुमाइंदनि खे यूसीए में विहारणु मुनासिबु नाहे अणधुरिया एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु कया वञनि
1: discussions. The Houthis called us and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And they're letting most ships go through. This is one country that they're not too happy with and we'll get that straightened out.
0: हुसैन फोन ते ॿुधायो त अमरीका सां जंग नथा चाहिनि जहाज़नि खे बि गुज़रण ॾेई रहिया आहियूं रुगो हिकु मुल्क खे रोके रहिया आहियूं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब जी तेल वारनि पाइपलाइंस ते हमलनि जो ज़िमेवार ईरान खे करार ॾींदे चयो त ईरान सां जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो सऊदी वली अहद मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे सभु कुझु ठीकु थी वेंदो सऊदी अरब जे पाइपलाइन ते हमले जो ज़िमेवार ईरान आहे आबनाए हुरमस ते कंट्रोल अमरीका जो आहे
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
4: सुनते रहो जीए एफएम 90.8